FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि तदनुसार 7 जून 2026। आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में

0: दो दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृवंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन। रचना है रविंद्र पठानिया की, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। टीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज सुबह 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे आज सुबह 6:55 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से। सुबह 7:05 पर समय होगा कार्यक्रम कृषि संकेत का। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम गागर में सागर सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम संगीत सरिता का समय होगा सुबह

10 मिनट। आज सुबह 8 बजे से सुनिएगा समाचार प्रभात। लोक संगीत का समय होगा सुबह 8:15। सुबह 8:30 पर समय होगा कार्यक्रम बाल सभा का। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9 बजे से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से। सुबह 10:05 पर समय होगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का। आज सुबह 11 बजे से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा दोपहर 2:10। दोपहर 2:30 पर विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। आज शाम 5:02 पर सुनेगा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। संगीत सरिता सुनेगा आज शाम 5:40 पर। आज शाम 6 बजे से सुनिएगा चित्रपट संगीत। शाम 6:15 पर सुनिएगा संगीत सरिता। सदाबहार गीत सुनिएगा शाम 6:30 पर। लोकरंग सुनिएगा शाम 6:45 पर। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा शाम 7:10 पर। लोकरंग सुनिएगा शाम 7:20 पर। ग्राम सभा का समय होगा शाम 7:30।

रात्रि 8 बजे से सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण, विषय वंचितों को वरीयता। रात्रि 8:35 पर समय होगा संगीत सरिता का। समाचार संध्या सुनिएगा रात्रि 8:45 पर। मनचाहे गीत होंगे रात्रि 9 बजे से। रात्रि 9:30 पर विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे से। और रात्रि 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर अनुराधा पोटवाल।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में सुनिए शमशाद बेगम की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है आग। गीत लिखा है बेहजत लखनवी ने और संगीत दिया है राम गांगुली ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90 की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। लीजिए आप सुनिए गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी से ये गीत। आवाज है गीता दत्त की, संगीत दिया है SD वर्मन ने और गीतकार हैं साहिर।

हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घर की जवानी है। हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घर की जवानी है। और जीने वाले होर भोले भले सोना न

0: अहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य, भवननिर्माणस्य, सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगतपञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषद् अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदनसमर्पणाय अन्तिमां तिथिं जूनमासस्य सप्तमदिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदनसमर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्वलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़ गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीयपुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तमप्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नवचण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। स्वीकार कीजिए ऋचा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अनुशासन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि अनुशासन ही मानव सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी है, जिसके जरिए हमारा क्रम अनुसार विकास संभव हो पाया है। हम देख सकते हैं प्रकृति के सारे कार्य किसी न किसी नियम से बंधे हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, मौसम और ऋतु परिवर्तन, चांद और सूरज का निकलना। यदि प्रकृति के किसी भी नियम में जरा भी परिवर्तन हो जाए तो इसका असर सीधा हमारे जीवन पर भी होने लगता है। अनुशासन का मतलब है किसी भी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। यदि हम अनुशासन में ना रहें तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अनुशासन के बिना मनचाही सफलता प्राप्त करना भी संभव नहीं है। अनुशासन हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सबसे अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यदि विद्यार्थी जीवन में हमने अनुशासन को अपने जीवन में उतार लिया तो सफलता मिलना निश्चित है। अनुशासन के जरिए ही हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। नियमित रूप से योग करना, खान पान की शैली, समय पर उठना, इन सारे कामों में अनुशासित रहने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कार्य क्षेत्र में भी अनुशासित व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है और सम्मान भी पाता है। समय पर काम करना, समय पर उपस्थित होना, कार्यस्थल के नियमों का पालन करना, इन सभी कार्यों के जरिए आप दूसरों के भी विश्वास पात्र बन जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी नियमों के पालन से हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अनुशासन के महत्व को समझने से हम एक बेहतर इंसान बनने की राह पर अग्रसर हो सकते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक करेगा बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों को भी प्रेरणा देगा।

0: कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही। लीजिए अब सुनिए संदेश।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
3: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
2: News on AIR?
3: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
2: अरे वाह माँ, कमाल है। News on AIR।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा गौरस ऐप, विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा।
6: पशुपालक साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित गौरस मोबाइल ऐप एक डिजिटल पहल है, जो कि पशुपालकों को गाय और भैंसों के लिए वैज्ञानिक व संतुलित आहार की सटीक जानकारी देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए मदद करता है। इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक भी हम आप लोगों तक उपलब्ध करा देंगे। इसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। गौरस ऐप की प्रमुख विशेषताएं जो हैं कि संतुलित आहार की जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल पर निकाल सकते हैं कि आप अपनी गाय को क्या क्या चीज दे रहे थे, दुग्ध उत्पादन क्या है, सब उसमें आपको नाम डालना पड़ेगा, आपकी पशु की उम्र डालना पड़ेगी, वजन डालना पड़ेगा, आप क्या क्या आहार दे रहे हैं, कितना दूध देती है एक दिन में, ये सब डालने के बाद में उसमें फिर बहुत सारे संतुलित आहार हैं, उस पर आप टिक करते जाइए कि कौन सा आहार आप कितनी मात्रा में दे रहे हो। आखिरी में उसका रिजल्ट निकल आएगा कि आप कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं या उचित दे रहे हैं। उसके बाद हम संतुलित आहार की जब जानकारी लेते हैं तो उसमें पशु की नस्ल, वजन, दूध की मात्रा, गर्भावस्था के आधार पर यह ऐप सटीक और वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि पशु को क्या, कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक्सपर्ट आपको आपके घर तक ये बताने नहीं आ सकता, लेकिन ऐप की ये बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरा एक चीज और बताएं कि स्थानीय चारे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 28 से अधिक प्रकार के स्थानीय चारों की विस्तृत जानकारी है कि किस चारे में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, हर चीज की आपको जानकारी मिलेगी। फिर आपको कैलकुलेटर मिलता है, तो उसके माध्यम से आपकी लागत कम कैसे की जा सकती है, कि आप किस चीज को किस चीज से बदल सकते हैं। अगर आप महंगा दाना आपके क्षेत्र में मिल रहा है तो आप किस चारे से उस दाने को घटा सकते हैं, तो इस आधार पर आपको आपकी लागत कम हो सकती है। और मौसम के अनुसार आपको चारे का उपयोग भी और गर्भावस्था के अनुसार सुझाव मिलेगा कि आप गर्मी के मौसम में पशु को कैसा चारा पानी देना है या क्या क्या आपको बदलाव करना है, ये आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। ऐप एक और आपको बहुत अच्छी सलाह देता है कि नस्ल विशिष्ट के लिए आपको मार्गदर्शित करता है कि गिर, साहिवाल, थारपारकर, मुर्रा, भदावरी जैसी प्रमुख नस्लों के लिए अलग अलग सटीक मार्गदर्शन इस पर उपलब्ध है। इस ऐप में नस्ल सुधार और स्वास्थ्य सलाह भी ऐप के माध्यम से आपको बार बार हीट में आना है, गर्भधारण न करने जैसी समस्याओं के समाधान भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं और बिना इंटरनेट के संचालन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तब भी आपका ये पूरा कार्य करता है और पूरी तरह से ये हिंदी भाषा में है जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और डेयरी में या पशुशाला में आपके आर्थिक लाभ का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि क्या क्या उपाय करेंगे तो आपकी डेयरी फायदे में जाएगी या आपको कैसे कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो यह गोरस ऐप आप लोग अवश्य डाउनलोड करें। यह पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा ऐप बनाया है पशुपालन विभाग ने। इसका उपयोग करके सभी पशुपालक लाभान्वित हों। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहाँ औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 1-9-11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति के सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर

वहां बैठक कर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। ये खुला मंच होगा जिसमें जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगर मालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण साहिबा नासिर, संयोजन व प्रस्तुति दीपक निषाद।
1: रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
2: गागर में सागर।
1: आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले पेश है सागर मंथन।
2: सागर मंथन।

0: शहर के लक्ष्मीपुरा वार्ड स्थित महिला विद्यालय में छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक श्री शैलेंद्र कुमार जैन ने विधायक निधि से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। नगर निगम सागर द्वारा नालों की सफाई अभियान तेज हो गया है। सागर को टॉप पर लाने की तैयारी है। निगम आयुक्त ने साफ कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण को देखते हुए स्वच्छता का एक भी पहलू नहीं छूटना चाहिए।
1: नगर निगम ने इन सब चीजों के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है कि हमारे नाले और कुओं को हम लोग जो है साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे। उसको लेके हम आम आदमियों से आग्रह करते हैं कि वो अपना कचरा जो है कचरा गाड़ी में ही दे, चूंकि आपके पास कचरा है और आपको लगता है कि हम कहां फेंके, तो उसका आपके लिए सॉल्यूशन हमेशा नगर निगम उपलब्ध आता रहता है। कहीं आपके पास कचरा गाड़ी नहीं आती है, कुछ नहीं आती, तो हमारे पास उसके टोल फ्री नंबर वगैरह है, उस आप कॉल करके या अन्य शिकायत माध्यम से या अन्य आपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस व्यवस्था के बारे में आप हमको अवगत कराते हैं। बट कृपया आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी जल संरचनाओं को स्वच्छ और सुंदर अगर रखना चाहते हैं तो उनमें कचरा ना फेंके।
0: पर्यावरण दिवस पर नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में वेबिनार का आयोजन हुआ तथा वन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। ये हैं DFO नौरा देही श्री रंजीत कुमार सिंह।
2: और देखिए, मेरा मानना है, जैसे हम कहते हैं ना कि मदर्स डे एक दिन मना के क्या होगा, शिक्षक दिवस एक दिन मना के क्या होगा, तो जो पर्यावरण है ना वो हमारे जीवन का एक गाइडिंग फोर्स है। और पर्यावरण ही इंश्योर करता है कि हमें स्वस्थ हवा मिले, पर्यावरण ही इंश्योर करता है कि हमें पीने को पानी मिले, पर्यावरण इंश्योर करता है कि हमारे खेत लहलहाएं और हमें खाने को मिले। एक दिन हम सेलिब्रेट करें 5 जून को, लेकिन जो उसकी मूल भाव है वो साल भर होना चाहिए, जीवन भर होना चाहिए कि हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत कंजर्वेटिव यूज करें, उसको दुरुपयोग नहीं करें, चीजों को रिसाइकल करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है 3R की बात है, तो वो सारी चीजें हैं। तो मेरे लिए वो एक दिवस से ज्यादा भाव है और बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर मेरी जीवन शैली भी है।
3: बहुत बढ़िया बात है सर, एक दिन नहीं, हम रोज ऐसा करें, रोज ऐसा सोचें और सबको जागरूक करें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण काफी चीजों से मिलकर बना है, तो सिर्फ एक चीज सहेजने से कुछ ना हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ वन्य प्राणियों का ध्यान देना है, पेड़ पौधों का ध्यान देना है, जैव विविधता का ध्यान देना है, जल स्रोतों का ध्यान देना है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में कि सब मिलके ही तो पर्यावरण है?
2: निसंदेह। देखिए, पर्यावरण की जो परिभाषा भी है कि जो हमारे जैविक अजैविक तत्व हैं उन सबसे मिलके बनाया। फिर जैविक तत्व की बात करूं तो उसमें हमारे पेड़ पौधे, पक्षी, तितली, कीड़े मकौड़े, मच्छर, मक्खी, टाइगर, भालू, सब कुछ आ जाएगा और हम खुद भी आ जाएंगे। और अजैविक तत्वों की बात करूं तो पानी आ जाएगा, हवा, पत्थर है ना, हमारी बिल्डिंग है, और ये सब आ जाएंगे। और हमारे जीवन के लिए तो सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। पर मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और कई बार लोग नासमझी में ऐसा कह भी देते हैं कि ये फॉरेस्ट वाले तो बस टाइगर टाइगर की बातें करते रहते हैं। तो हम टाइगर टाइगर की बातें क्यों करते रहते हैं, खास करके हम जो सेंट्रल इंडिया में हैं, और हमारा राष्ट्रीय पशु तो है ही, हम मध्य प्रदेश टाइगर की संख्या में भारत में नंबर एक पर है, टाइगर स्टेट है। पर हम इसलिए टाइगर टाइगर नहीं कहते, हम टाइगर टाइगर इसलिए कहते हैं। एक मैं आपको एक कहानी भी बचपन की बताता हूं कि एक बहुत बूढ़ी अम्मा थी और वो बूढ़ी अम्मा के बहुत सारे अरमान थे, तो वो तपस्या करने लगी। और वो तपस्या करते हुए, बहुत बुजुर्ग थी, तो तपस्या करते हुए शिव जी आए और उन्होंने बोला एक वरदान दूंगा मैं, एक वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पोते को चांदी के चम्मच में खाना खिलाते हुए देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मांगा तो एक ही वरदान, पर उसमें बहुत कुछ था। चांदी के चम्मच के लिए घर में पैसा होना चाहिए, पोता होने के लिए बेटे की शादी होनी चाहिए, और पोते को देखने के लिए उतनी लंबी आयु भी होनी चाहिए। तो जब हम टाइगर संरक्षण की बात कहते हैं तो आपको टाइगर बचाना है तो उसके खाना बचाना होगा। मतलब टाइगर की फूड चेन के जो भी जानवर हैं, चाहे हिरण है या सुअर है या तमाम चीजें बचानी होगी। और फूड चेन की वो जिन जिन प्रे स्पीशीज को बचाना होगा उनके भी खाने को बचाना होगा। तो आपको घास बचानी होगी, पत्ते बचाने होंगे। अब घास पत्ते आप बचाएंगे तो ये घास पत्ते जंगल में रहेंगे और जंगल पानी को सोखेंगे और रिस के धीरे धीरे आपके खेतों में पानी आएगा। आप देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश की जो जीवन दायिनी है माँ नर्मदा, जहाँ अमरकंटक से माँ नर्मदा का उद्गम होता है
3: जी।
2: वो तो हमारे घर के नल में जो पानी आता है उससे भी कम पानी होता है, लेकिन धीरे धीरे माँ नर्मदा आगे बढ़ते जाती है, कान्हा के जंगल

0: बांधवगढ़ के जंगल, अमरकंटक के जंगल, हमारा भी जंगल, हमारा वीरांगना दुर्गावती का भी जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से भी माँ नर्मदा के लिए एक कहें हम एक थोड़ा सा जल अपना सोख लेते हैं और माँ नर्मदा को, और देखिए वो जो एक नल की टोटी जितना पानी है हमारे नरसिंहपुर जिला या होशंगाबाद जिला आते कितना विहंगम हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो हम टाइगर बचाने के नाम पे असल में पर्यावरण बचाने की ही बात कह रहे हैं।
2: सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों के पुनर्वास के लिए कूनो अभ्यारण्य से चीतों को यहां लाकर बसाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तैयारी में आरंभ हुआ चीता चौपाल कार्यक्रम, ये हैं डीएफओ महोदय श्री रंजीत कुमार सिंह।
0: हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना था कि जो चीता एक वन्य प्राणी जो विलुप्त हो गया था 1950 के दशक में भारत से, और वो प्राणी देखिए खुले जंगलों में रहता था, मैदानों में रहता था, लेकिन वो मैदानों में हमने बहुत सारे खेत बना लिए, बहुत सारे उद्योग धंधे आ गए और चीता धीरे धीरे शिकार वगैरह से खत्म हो गया। लेकिन 17 सितंबर 2022 को चीता आए और सबसे पहले कूनो में आए, कूनो के बाद वो गांधी सागर एक हमारा सेंचुरी है मध्य प्रदेश का, वहां गए। अभी खबरों में है कि गुजरात में एक बन्नी ग्रासलैंड है वहां पे, और एक हमारे नौरादेही में या फिर अब जिसको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहते हैं वहां भी आने वाला है
1: जी।
0: लेकिन ये जो चीता वन्य प्राणी है ना, इसको हमारी पीढ़ी ने किसी ने देखा ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही है।
0: और अनजाने का, अनदेखे का जो डर होता है ना, वो बहुत होता है। तो जो चीता है वो हमारे जो बुंदेलखंड का जंगल है, उस जंगल का एक तरह से मैं कहूँ रिवाइवल करेगा हमारा चीता। लेकिन अभी डर है लोगों के मन में कि चीता आएगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो हम धीरे धीरे गांव में हम एक चौपाल लगा रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और रात के समय हमारी टीम जाती है चीता के ऊपर, उन्हें छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, वीरांगना दुर्गावती के वन्य प्राणियों की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी इंटरेक्ट करते हैं, और उस कार्यक्रम के आखिरी में छोटी सी क्विज होती है, बच्चों को और जो बड़ों को जो भी कुछ मतलब जो आंसर देते हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे लोगों को जागरूकता अभियान चलाया है, उसको नाम दिया है चीता चौपाल। और इस जिले में, इस क्षेत्र में चीता और उसके सारे साथी वन्य प्राणी फूले फलें, ये हम वादा करें खुद से।
2: जाने माने निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर की पुण्यतिथि पर उनकी याद में सागर में गुजराती बाजार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पेश है संपादित अंश।

0: जाने माने शायर डॉक्टर बशीर बद्र की याद में सागर में आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में रहे उनके शागिर्द अशोक मिजाज बद्र जी।
1: सबने अपने अपने विचार रखे थे, तो सबसे पहले मुझे खड़ा किया गया कि भाई जो सबसे लाडले उनके हैं, वो चाहते हैं कि पहले वो इनके बारे में समाचार ख्याल करें, कुछ बताएं। मैं पढ़ा हुआ, मैंने देखा कि पीछे इतनी लंबी लिस्ट है, जाहिर है कि मेरा बोलना मुनासिब नहीं होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई बस्तीवाद की तारीफ करना मेरे बस की बात नहीं, और रहा सवाल इसका कि कम से कम अपने अब्बा की तारीफ मैं तो खुद अपने मुंह से करूँ, ये कतई शोभा नहीं। कोई अपने पिता की कब तक तारीफ करेगा, अपने गुरु की क्यों तारीफ करे, जबकि तमाम सही जिम्मा तमाम लोगों को देता हूँ जो पीछे बैठे हैं, काम के लिए।
0: कार्यक्रम का संचालन जाने माने कवि और शायर आदर्श दुबे ने किया और दूसरे सत्र में मुशायरे का आयोजन हुआ। पेश है ध्वनि चित्र।
2: मैं मुसलमानों का बड़ा एहतराम करता हूँ, आप आए यहाँ मैं राम राम करता हूँ, आपकी खुशियों का इंतजाम करता हूँ, आपकी खुशियों का इंतजाम करता हूँ। तो दुनिया का चलन सदा जोड़ घटाने की रहे, दुनिया के चैनल सदा जो

0: कि आहार में ढकी जाएगी 21वीं सदी, आहार में ढकी जाएगी 21वीं सदी, फिर भी गजल सुनाएगी 21वीं सदी, आहार में ढकी जाएगी 21वीं सदी, फिर भी गजल सुनाएगी 21वीं सदी, कंप्यूटर पे गजलें लिखेंगे पश्चिम पद वाले को भूल जाएगी 21वीं सदी।
1: आजकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्स की काफी मांग बढ़ गई है, जो ग्रेजुएट होने के साथ साथ सीधे नौकरी और स्टाइपेंड का रास्ता भी खोलते हैं। सागर की शासकीय कन्या महाविद्यालय और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अभी ऐसे कोर्सों की शुरुआत की गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि डिग्री मिलने के साथ उनके हाथ में नौकरी का सर्टिफिकेट भी होगा। ये हैं गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी।
2: हमारे महाविद्यालय में प्रदेश द्वारा AEDP कोर्सेज दो अलॉट किए गए, जिसके दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। एक AEDP कोर्स है BCOM इन रिटेल मैनेजमेंट और एक है BSc इन फार्मेसी। इसके अलावा हमारे यहाँ AICTE द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेज के रूप में BBA BCA चल रहे हैं, जिनकी आगे संभावना है कि हम इनको MBA और MCA के रूप में PG कक्षाएँ शुरू करें। इसके अलावा जैसे तीन हमारे स्वावित्तीय पाठ्यक्रम हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये सीधे सीधे बच्चों के लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की दिशा में, केमिकल इंडस्ट्री में बच्चों को रोजगार के अवसर हैं। और आप जो आज पॉल्यूशन की जो बात हो रही है, पॉल्यूशन हटाने की दिशा में जो जो भी पॉल्यूशन बोर्ड हैं, इनमें सरकारी नौकरी की संभावनाएँ भी हैं।
1: विश्व साइकिल दिवस पर सागर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खेल परिसर से किया गया। अधिक जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी श्री प्रदीप अभिद्रा।
3: जी नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आज चूंकि जैसा हम जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण है, तो आज ये कार्यक्रम हमारे खेल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों। इसका एक आयोजन सुबह 8 बजे यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे खेल परिसर के बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने इसमें अपनी सहभागिता दी और एक रैली के रूप में संदेश सभी शहरवासियों को भी दिया कि हम साइकिल चलाएं, स्वास्थ्य बनाएं, सेहत बनाएं और पर्यावरण को स्वच्छ और अच्छा रखें, ये हम सबकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है आज। और चूंकि साइकिल दिवस भी है और साइकिल दिवस के स्वरूप में आयोजित किया गया।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सागर सहित बुंदेलखंड में जून के दूसरे सप्ताह से प्री मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआती 10-12 दिनों तक गर्मी और उमस के तेवर दिखते रहेंगे, लेकिन बाद में फुहारें गर्मी से राहत देंगी। 21 जून सागर में मानसून आने की औसत तारीख बताई जा रही है, लेकिन ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, शिखर की ओर।
4: शिखर की ओर।
5: हमारे साथ आज शिखर की ओर कार्यक्रम में हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अरविंद जैन जी। सर, आपका बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद मैडम।
5: हम बात करना चाहते हैं कि बच्चे फिर से अब कक्षाओं में आ रहे हैं, तो किस दिनांक से शुरू हो रहा है उनका ना?
6: इस संबंध में मेरा वक्तव्य यही है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने पिछले 2 सालों से हम लोगों ने प्रयास किया है लगातार कि बच्चे 1 अप्रैल से स्कूल आए, और 1 अप्रैल से स्कूल आए भी
5: जी।
6: और उपस्थिति भी उनकी लगभग 75% उपस्थिति रही, और हम लोगों ने 1 अप्रैल से स्कूल लगा के 30 अप्रैल तक पहले प्रथम सत्र में लगभग जो उनका पाठ्यक्रम निर्धारित था वो पूर्ण कराया। उसी बीच में हम लोगों ने मतलब जो शासन की योजनाएं थी, साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण, ये कार्यक्रम भी जो समय पे हो गया। पिछले सालों में हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो उन्होंने प्रयास किया था, हम लोगों ने शासन ने प्रयास किया था, शासन निर्देश थे हमारे मित्र शासन के कि आप समय पे करें, तो हम लोगों ने इस बार पूर्णता निःशुल्क पुस्तक

0: वितरण का कार्यक्रम
1: जी।
0: और साथ में ही उनको साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी किए। हमें 100% साइकिल जो मांग थी मिल गई हमको और हम लोग लगभग लगभग प्रकाशनों ने भेज दी थी सब जगह, उनकी पावती हो गई है। और अभी दोबारा हमारा उस सत्र था वो मतलब छुट्टियों के बाद में वो हमारा 16 जून से स्टार्ट होना है, क्योंकि बच्चे पहले प्रीपेयर तैयार हो गए थे
1: जी।
0: तो उस अब हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम समय पर पाठ्यक्रम पूरा करें, क्योंकि हमको अभी अगस्त में थर्ड मंथली एग्जाम कराना होगा, उसके हिसाब से लगभग हमारा 33% कोर्स जो है पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए। इसलिए भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अतिथि शिक्षक को जहाँ पोस्ट खाली है अतिथि शिक्षक रखते हुए समय पे स्कूल लगवाते पाठ्यक्रम पूर्ण कराएं, ताकि जो रिजल्ट हमारे पिछले साल से बढ़ रहे हैं वो लगातार बढ़ते रहे। इस बार हमारे रिजल्ट जो है अच्छे रिजल्ट रहे और 80% समथिंग रिजल्ट हमारे पहुंचे हैं जो पिछले सालों में कभी नहीं रहे। तो मेरा सभी पालकों से आपके माध्यम से ये सूचना पहुंच जाए कि फर्स्ट डे से ही बच्चे पूरे नियमित आए और अपने क्लास में नियमित बैठे।
1: जैसा सर आपने बताया कि अभी त्रिमासिक परीक्षा होगी अगस्त में, तो इसके अतिरिक्त क्या ऐसी भी कुछ व्यवस्था है हमारे स्कूल में, टेस्ट लिए जाएं बच्चों के जिससे पता चले कि उनकी तैयारी कैसी?
0: हाँ, बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। हमें यहाँ हर मंथ में एक टेस्ट लिया जाता है, वो टेस्ट के आधार पर बच्चा का परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, तो पुनः टेस्ट लेकर के मंथली रिकॉर्ड बनाया जाता है। और चूंकि हर स्कूल में हो रहा है, हमारा शांति स्कूल है, पीएमसी स्कूल है, उनको विशेष रूप से हम और ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी को ध्यान देते ही देते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को 100% उनकी उपस्थिति हो, साथ ही साथ उनके जो परफॉर्मेंस में बढ़े पहले से।
1: बहुत बढ़िया बात है। जैसा आपने बताया कि हमारे बच्चों का रिजल्ट इस बार अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं रह पाया किसी कारणवश, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है क्या शासन की ओर से?
0: नहीं, जो बच्चे इस बार जो रिजल्ट कम आए थे या असफल हो गए थे या उनके नंबर कम हुए थे, तो शासन ने व्यवस्था की है अब बच्चों को फेल ना करके उनको सेकंड एग्जाम देने का प्रावधान दिया था।
1: अच्छा।
0: और हमने सेकंड एग्जाम करा दिया उनका और सेकंड एग्जाम के रिजल्ट ही बहुत शीघ्र आ जाएंगे संभवतः 30 जून तक, ताकि उनका सेशन में डिस्टर्ब ना हो और लगातार उनकी साल खराब ना हो। तो मध्यप्रदेश शासन की अच्छी पहल है, बल्कि सीएम साहब को कहें कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है अपने कार्यकाल में कि वो पिछले 2 सालों से हम लोग सेकंड एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे को फेल ना हो, बच्चे को घटना हो ना हो किसी प्रकार की, इसके लिए बच्चे को दोबारा मौका देते हैं और कोई विषय जितने चाहे 2-3 जो विषय बैठना हो बैठ के परीक्षा देता है, रिजल्ट हम लोग जून में दे देते हैं, शासन प्रयास करता है ताकि बच्चे की साल बच जाए।
1: बहुत बढ़िया बात है, ये तो सर आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। अब दूसरी बात एक हम ये पूछते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखा गया है कि बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या स्पोर्ट्स हैं, खेल कूद या
0: शाम जो का हर स्कूल में नियम है, कालखंड निर्धारण किए जाते हैं, तो उसमें वो सैटरडे को तो हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं 2-4 पीरियड में, 3 पीरियड में, उनके माध्यम से उनको कल्चरल या दूसरी एक्टिविटी में हर सैटरडे को आधे टाइम में ही प्रोसेस चलता है, बाकी तो स्पोर्ट का डेली होता है कालखंड शाम को।
1: जी। अच्छा सर, जैसे स्पोर्ट्स का आपने बताया कि होता है पीरियड, तो उसके लिए कुछ सामग्री भी क्या मिल सकती है स्कूल से?
0: नहीं नहीं, सामग्री स्कूलों में है और कहीं सबके स्पोर्ट के नाम से जो फी कलेक्शन होता है, उनका फी कलेक्शन होता है, तो उसके नाम पे वो प्रॉपर सुविधाएं हैं। कहीं कहीं कमी है, मांग है, तो हमें मांग बताते हैं तो हम लोग फिर पूर्ति कराएंगे अगर ऐसा कोई विषय कहीं आता है तो।
1: जी। और सर अब चलते चलते हम ये चाहेंगे कि जो अभिभावक और विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर के माध्यम से, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे अब ये पुनः सत्र आरंभ हो रहा है?
0: मेरा उन सबसे ही निवेदन है पालकों से कि एक तो बच्चों को नियमित स्कूल भेजे तो पढ़ाई पर ध्यान रखाएं, और अगर पालकों को कोई समस्या है तो हम लोग बाल के बैठक भी करते हैं हर 3 महीना में, तो अपने बच्चों की रिपोर्ट दे दें, बच्चों में क्या कमी है, क्या सुधार चाहिए, तो उसके लिए हम लोग स्वागत करेंगे उनका।
1: बहुत धन्यवाद सर आप। और अब बारी है इस पत्रिका के अगले चरण की, सागर के मोती।
2: सागर के मोती।
1: सागर के मोती। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं एक उभरती हुई गायिका। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे आपका नाम।
3: मैम मेरा नाम है रैनी।
1: तो रैनी, ये आप गीत संगीत से जो जुड़ी, तो कब से शौक हुआ रैनी को गाने का?
3: मैम मुझे बचपन से, जैसे क्लास 6-7 में शौक हुआ था गाने का, और धीरे धीरे ये ग्रो होता रहा, आज भी ग्रो हो ही रहा है।
1: जी। तो अभी आपने बताया 6th क्लास से, और अभी आप क्या पढ़ रही हैं?
3: मैं बीटेक 3rd ईयर।
1: ओके। तो रैनी अब ये बताओ कि क्या क्या गाती है रैनी?
3: पीपल से कि मैं अच्छा गाती हूँ
1: जी। तो

0: कि ना आप जैसे किसी को कोई भजन गा लेता है, कोई गजलें गा लेता है, और कोई लोकगीत गा लेता है, कोई फिल्मी गीत अधिक गाता है, आप क्या गाती है रनी?
1: मैम मैं गीत अधिक गाती हूँ।
0: अच्छा, और कभी कोई भजन भी ट्राई किया?
1: हाँ जी हाँ जी, भजन भी मैंने ट्राई किए हैं।
0: तो चलो शुरुआत में कुछ भजन की कुछ लाइनें सुना सकती हो क्या?
1: हाँ जी हाँ जी, जरूर
0: जी प्लीज।

0: चन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं।
1: हमने देखा है कि रैनी आप को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आप कैरोके पे बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, तो एक मुजाहरा उसका भी हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए, वो भी सुना दीजिए आप कैरोके पे।
0: जी सुनाती हूँ।

0: वाह वाह वाह, भाई मजा आ गया। बहुत आपको सुरताल की समझ है और आप बहुत अच्छा गा रही हैं। अब ये बताओ कि ये प्यारा सा गला सही रखने के लिए आप क्या ख्याल रखती हो इसका?
1: एक पहली बात जो सबसे जरूरी है, मैं पानी ठंडा बिल्कुल नहीं पीती, गर्म पानी या नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ।
0: अच्छा,
1: बाकी ज्यादा है कि मैं पानी में शहद घोल के जरूर लेती हूँ।
0: अच्छा, तो भाई समझ में आए कुछ राज की मिठास जो है आपके गले में, इसका क्या राज है? अब ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने गाने में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया?
1: मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, एक बार जैसे स्कूल से मैंने परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया है, मैं अपने स्कूल के सिंगिंग ग्रुप में थी और उसके चलते मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सिंगिंग कॉम्पिटिशन में
0: जी।
1: उसके बाद आगे चलते आके कॉलेज में मैंने बहुत बार परफॉर्म किया है स्टूडेंट्स के सामने, और हॉस्टल डेज होते हैं वहाँ भी मैं परफॉर्म करती रहती हूँ।
0: अब ये बताओ रेनी कि कभी आपने गायकी को करियर बनाने का सोचा या इसे सिर्फ शौक रखना चाहती है?
1: मैं इसे सिर्फ शौक ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मेन इंटरेस्ट जो है, जो मैं शुरू से बनना चाहती थी जो
0: जी,
1: वो है एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, जो कि मैं अभी कर रही हूँ कोर्स
0: जी, जी।
1: और सिंगिंग को मैं एज अ शौक साइड में रखना चाहती हूँ।
0: चलिए, तो हम चाहते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनके भी आप आसमान को खूब ऊंचाइयों पर छुएं, और हम चाहते हैं कि गायकी में भी आप इसी ऊंचाई तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपने समय दिया।
2: अगले पायदान पर यह है माटी की महक।
3: माटी की महक।
0: आज माटी की महक में खूब ही बढ़िया रंग बिखरे, कारण यह है कि हमारे संगे है एक चित्रकार भैया। का नाम तुम्हारो?
4: प्रदीप अहिरवार।
0: प्रदीप अहिरवार, तो हमने सुनी और देख भी रहे, मनो बहुत सुंदर आप चित्रकारी करत हो। तो भैया पहले तो यही जान लें कि चित्रकारी का जो शौक भाव, वो अचानक से भाव के पहले बचपन से ही हो रहा हो?
4: 4-5 साल की हती तो भैया मैं मतलब ऐसी पेंटिंग के बारे में इसको पता चली कि मतलब इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसी रुचि थी तो उसी में फिर मैं आगे बढ़ा।
0: अच्छा, तो जब बचपन से चित्रकारी करी, सो बुंदेलखंड की हम देख रहे हैं कि जो परंपरा रहे थे वो की चित्रकारी आप बहुत भारी अच्छी कर रहे हैं। जो अपन के भगवान का हाथ, देवी माँ का हाथ, उनके भी चित्र अपन बहुत बना, तो अपन ने काका बनाओ?
4: हमने गणेश जी बनाए हैं, राधा कृष्ण जी की बनाए हैं, और राम जी भी बनाए हैं।
0: हाँ।
4: मतलब और सब भगवान को बनाए हैं।
0: अरे वाह, मनो आप भक्ति भाव में भी डूबे रहे तो जब चित्रकारी करा।
4: बहुत बहुत बहुत, बहुत।
0: अच्छा, अब अपन और आगे बढ़े तो पूछें कि कौन कौन से भी रंग कहा थे जो तुम प्रयोग में लात हो?
4: कलर पेंसिल को प्रयोग करा थे, ऑयल कलर को करा थे, और चारकोल पेंसिल को भी करा थे, वाटर कलर को भी करा थे।
0: अरे वाह, कौन सा कागज, ये खास कागज रहे तो जोन पे आप कर रहे हैं?
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई भी किसी कोई भी कागज पे चल जात, और वैसे यदि देखो तो वाटर कलर के भी अलग कागज आते हैं, चारकोल वगैरह के लाने भी अलग कागज आते हैं, और ऑयल पेंटिंग के लाने भी अलग कागज आते हैं, जैसे कैनवास से बनाई जाते हैं।
0: क्या बात है, तो कबाऊ अपन प्रदीप भैया अपन ने कबाऊ कपड़ों पे भी करो है प्रयास करने को?
4: कपड़ों पे हाँ करो।

0: तो का भाव
1: कपड़ों पे बनाई थी, अच्छी बनी थी।
0: अरे वाह, हाँ वहाँ भी कोशिश करी और कामयाब हो गए मनी।
1: ऊन वगैरह से भी कपड़ों पे डिजाइन बनाई थी।
0: अरे वाह, अब ये और जानना चाह रहे प्रदीप के कहूँ ये चित्रकला का प्रदर्शन करने कहीं जाने का मौका मिलो अपन को के नहीं मिलो अभी?
1: हाँ बहुत मिलो है, जात भी है, लाइव पेंटिंग करने भी जाते हैं, और जैसे ये वर्कशॉप वगैरह लगा देते तो उनमें भी जाते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले पद्मश्री सम्मानित राम सहाय पांडे जी को बना भी गई थी, हमारी क्लास से सर ले गए थे हम लोग को।
0: अरे वाह, मैंने बहुत अच्छा काम कर रहे कहा आप तो। अब हम जानना चाह रहे कि चित्रकारी कहाँ तक सीमित रहे, अपन को आगे लेके भविष्य में इसी क्षेत्र में जा सकन है कि अपन इसे बस अपने शौक तक ही रखें?
1: नहीं नहीं, इसको हमें आगे लेके जाने।
0: देखो एक है हमारी ये परंपरा, चलत चलत हम मनोरंजन के लिए लोकगीत सोई सुनवा, तो कोई लोकगीत ऐसो है जो आपको बहुत पसंद हो? ये
1: पसंद तो है बहुत, लेकिन आप अपनी पसंद सुना दो।
0: तो चलो हम अपनी पसंद से आपके लिए और श्रोताओं के लिए सुनवा रहे हैं जालो की।

0: में आहे ना हुई ये हैरानी, परे पे का में आहे ना हुई ये हैरानी, पानी ए पानी ए पानी हरे घर में चाने, पानी जीवन को प्यारे सारे।
1: इस सप्ताह चर्चा में अब बारी है इस सेगमेंट की।
2: इस सप्ताह चर्चा में
1: एएसपी लोकेश कुमार सिन्हा को रुस्तम अवार्ड की घोषणा हुई है। अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, अनुशासित कार्यशैली, अपराध नियंत्रण में प्रभावी भूमिका, कानून व्यवस्था संधारण और जन उन्मुखी पुलिसिंग के लिए वो जाने जाते रहे हैं। सागर की सूबेदार रश्मि रावत ने साबित कर दिया है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। शादी के 10 साल बाद पुलिस विभाग में नौकरी पाने वाली रश्मि ने अब पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। 180 किलो वजन उठाकर उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की की है। सागर की रहने वाली अपूर्वा ने मिसेज एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का खिताब जीतकर अपने शहर और देश का नाम रोशन किया है। अब इस सफलता को प्राप्त करने के बाद वो अगले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके ये विचार।
3: मिसेज एशिया पैसिफिक वर्ल्ड जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा और भगवान की कृपा से मैंने वहाँ पर विनर का जो मुझे टाइटल है, मुझे क्राउन मिला है वहाँ पर। अगर आप में जोश हो या आप में कॉन्फिडेंस हो, मुझे ऐसा लगता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में।
1: और अब साहिबा को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। निर्माण व स्वर साहिबा नासिर का, प्रस्तुति व संयोजन दीपक निषाद का।
2: गागर में सागर।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण साहिबा नासिर, संयोजन व प्रस्तुति दीपक निषाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में। ये गज़ल कलाम है इब्राहिम अश्क का और संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी

0: और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में। लीजिए, सुनिए चंदन दास की आवाज में ये गजल।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया।

0: अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा

0: तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए सीताराम कुशवाहा के स्वर में ये लोकगीत।
3: आज गजानन द्वारे पर को मांगने चली, आज गजानन

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए अब सुनिए महादेव सिंह की आवाज में ये लोकगीत।

सो चोर होए चाहे पुजारी होए, जेल में होए चाहे मंदिर में होए पेल चाहे न पानी, पूजा पाठ होए चाहे तीर्थ क्षेत्र पे हो भैया पेल चाहे न पानी, वो हार पहाड़ में होए चाहे मेला बाजार में पेल चाहे न पानी, साजे होए चाहे आंद्रे मूर्ख होए चाहे ज्ञानी मनो पेल चाहे न पानी।

पानी होए चाहे नौकरानी उनो चाहे न पानी, और सैलून में गए बार बनवावे चाहे होटल में पेल चाहे न पानी। तो दवाई में चूरन गोली खाओ जहाँ प्यास लगी मई चाहे न पानी, और खावे को बहुत चीजें हैं मनो भैया पीवे को एक पानी। तो संसार की रचना एक तरफ जी

खेती में कुआ हो चाहे डबरा डबरिया पेल चाहे ने पानी, गोबर कूड़ा की सड़ी पाच बनाओ भैया मनो पेल चाहे ने पानी, सियारी उनारी पेल हो तो पेल चाहे ने पानी, और पेड़ पौधे लगा फूल बाट का सजा तो सींच।

इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।

स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा में और आप सभी बच्चों को ऋतु दीदी का जय हिंद। प्यारे बच्चों, हमने कर ली है आपसे मुलाकात और हम आपसे करेंगे बहुत सारी बात, बाल धमाल की बात, रेडियो की पाठशाला की बात, मनोरंजन की बात और हाँ, बाल मंच की बात, जिसमें मिलेंगे आप अपने नन्हे नन्हे दोस्तों और कलाकारों से। और सबसे पहले अब करते हैं बाल धमाल की बात। तो प्यारे बच्चों, बाल धमाल में आज देते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी। प्यारे बच्चों, वुड बॉल कभी सुना है आपने? सुना है तो चलिए, जिसने नहीं सुना वो भी आज इसके बारे में जान जाएगा। तो इस बार आपको बताते हैं कि वुड बॉल एक आउटडोर गेम है जिसमें गेंद का व्यास यानी

की डायमीटर जानकारी के अनुसार लगभग 9.5 सेंटीमीटर होता है और यह लकड़ी से बना होता है। वुडबॉल को घास, मिट्टी, रेत या खुले मैदान में खेला जाता है। बच्चों, वुडबॉल एक रोमांचक खेल है जो काफी हद तक गोल्फ जैसा दिखता है, लेकिन नियम और खेल की शैली अलग है। इसमें लकड़ी के मैलेट यानी कि हथौड़े और लकड़ी के बॉल का उपयोग किया जाता है। बच्चों, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो वुडबॉल का आविष्कार 1990 में ताइवान में हुआ था। इसके आविष्कारक मी वेंग, मिंग हुई और कॉन्ग चू यंग थे। खेल में बॉल को सबसे कम स्ट्रोक हिट में सभी गेट से पार कराना होता है। अभी कैसे खेला जाता है बच्चों? तो खिलाड़ी लकड़ी की मैलेट से लकड़ी की गेंद को मारते हैं और गेंद को निर्धारित गेट यानी कि दो खंभों के बीच से पास करना होता है। जो खिलाड़ी सबसे कम स्ट्रोक में सभी गेट पूरे करता है वह विजेता हो जाता है। तो है ना मज़ेदार? और आज बाल धमाल में आपने फुटबॉल के बारे में जाना। और हमारे बच्चे तो छुट्टियां हैं तो खेल कूद मस्ती मनोरंजन इसमें लगे ही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मन के सच्चे हैं।

0: हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मन के सच्चे तो हैं ही, और हमारे बच्चों को इंतजार है कि आज बाल मंच में कौन मिलने आए हैं। तो आइए सुनते हैं।
1: आ ई ई उ उ ओ लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
0: स्वागत है हमारे स्टूडियो में आए हुए सभी प्यारे बच्चों का। सबसे पहले मिलते हैं इस प्यारी सी बिटिया से। बेटा क्या नाम है आपका?
3: आद्या नामदेव।
0: आद्या, आप आज अपने जो नन्हे श्रोता आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या लेकर आई हैं?
3: मेरी

0: जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छा भजन आद्या ने सुनाया। और अब है हमारे साथ एक बहुत ही हसमुख, क्या नाम है बेटा आपका?
2: उमेर अहमद।
1: ये बताइए कि आप आज आपके नन्हे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या लेकर आए हैं?
2: गर्मी आई संग छुट्टियां लेकर आई, गरम गरम हवाएं चलती, धूप भी बहुत तेज निकलती, बारिश आई रिम झिम बारिश आई, उमड़ उमड़ कर बादल आते, कोयल गाती मोर नाचते, सर्दी आई कोहरे की चादर ओढ़ ले आई, कंबल लजाए के क्या कहने, ऊन के कपड़े हम सब के पहने।
1: लेकिन अभी है क्या?
2: गर्मी।
1: गर्मी है ना, ज्यादा वाली।
2: खेलने के लिए शाम को निकले।
1: बहुत अच्छी बात उमेर ने बताई है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए धूप में घर से बाहर ना निकलें। साथ है एक और प्यारी प्यारी बिटिया। बेटा क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम आद्या रूसिया है।
1: आद्या, आप सबसे पहले ये बताइए कि छुट्टियों में आप क्या कर रही हैं?
3: मैं छुट्टियों में एक क्लास जाती हूँ जिसका नाम है रंगों की पाठशाला। वो एक वर्कशॉप है, बेसिकली ये एक फ्री वर्कशॉप है, इसमें सारे मटेरियल्स वही प्रोवाइड करते हैं। और ये जो रंगों की पाठशाला है 15 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें सारे मटेरियल्स वही प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: अब ये बताइए कि आपके जो दोस्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या लेकर आई हैं?
3: मैं कोई कविता या गाना तो नहीं लेके आई हूँ, बट मैं एक बात जरूर लेके आई हूँ। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियाँ, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, वो अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे वो कोई भी अपनी हॉबीज़ को लेके कोई भी क्लासेस ज्वाइन करें, जैसे मैंने किया, जहाँ पे सब कोई प्रोफेशनली हमें ड्राइंग और आर्टवर्क सिखाते हैं, वैसे ही कई लोगों को डांस में इंटरेस्ट होगा, कई को म्यूज़िक में होगा, तो वो अपनी हॉबीज़ को आगे लेके जाएं, क्योंकि समर वेकेशन ही एक मौका है आपके लिए अपनी हॉबीज को आगे ले जाने के लिए, तो इसे अच्छे से यूटिलाइज करें।
1: बच्चों ने बहुत ही अच्छी जानकारी ली होगी। आद्या से बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। और अब मुलाकात करते हैं, क्या नाम है बेटा आपका?
4: जुबिया इरशाद।
1: जुबिया, आप क्या जानकारी देने वाली हैं आज अपने श्रोताओं को?
4: मैं सबसे ये कहना चाहूंगी सभी को अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि गर्मियों की छुट्टियाँ वेस्ट ना जाए।
1: बहुत ही अच्छी बात कही है आपने।
4: मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी छुट्टियां आती हैं उन्हें वेस्ट ना करके उनका यूज किया जाए। ज्यादातर जो आज के बड़े बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, वो ज्यादातर अपना टाइम मोबाइल में यूज करते हैं, रील्स देखते हैं या वीडियो देखते हैं।
1: इवन छोटे बच्चे,
4: छोटे बच्चे भी खाना खाने के लिए
1: हाथों में, तो आजकल मतलब बहुत जल्दी मोबाइल आ रहा है,
4: मोबाइल आ जाता है, उन्हें खाना खाने के लिए भी मोबाइल लगता है। और पेरेंट्स, कई पेरेंट्स दे भी देते हैं, लेकिन नहीं देना चाहिए।
1: जुबिया ने बहुत अच्छी बात, मोबाइल से दूरी बनाए रखें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो और आप अपने समय को सही जगह उपयोग कर सकें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब ही हमारे साथ बहुत ही छोटा छोटा सा एक नन्हा कलाकार। बेटा क्या नाम है आपका?
5: दिव्यम श्रीवास्तव।
1: दिव्यम, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं आप। तो दिव्यम ये बताइए कि आज आप कुछ सुनाएंगे हमें? क्या सुनाएंगे?
5: नदी में इतना पानी कहाँ से आता?
1: तो बताइए,
5: नदी में इतना पानी कहाँ से आता, बहते बहते फिर वे कहाँ है जाता, नदी में इतना पानी पर्वत से आता है, बहते बहते फिर वे सागर में मिल जाता है।
1: किसने बताया?
5: डी में आ गया था, वहाँ पे सिखा रहे।
1: चलिए दिव्यम, बहुत ही छोटे छोटे से हैं और इन्होंने बहुत ही प्यारी कविता सुनाई है। एक और प्यारी बेटिया से मिलते हैं। बेटा क्या नाम है आपका?
6: आराधिता तिवारी।
1: आराधिता, ये बताइए कि आज आप क्या सुनाएंगी?
6: मैं एक अपने साथ एक स्टोरी बताऊंगी। एक बार मैं अपनी नानी के घर जा रही थी, तभी वहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, वहाँ पे कुछ बच्चों को परेशान कर रहे थे, तो मैंने उसकी हेल्प की थी, तो मुझे वहाँ पे गिफ्ट मिला था उनके मम्मी पापा से।
1: तो आपने क्या किया, उस बच्चे को बचाया? कैसे?
6: अपने पेरेंट्स को बुला के उनको, उन लड़कों को भगा दिया।
1: और हेल्प करने के बाद आपको गिफ्ट भी मिली? तो आप कहना क्या चाहती हैं अपने जो नन्हे श्रोता नन्हे दोस्त आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं?
6: हमें जो भी दिखे उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए और हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए।
1: बहुत प्यारी बात आपने कही है। और अब मिलते हैं एक और प्यारी बेटिया से। बेटा क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम सौम्या सोनी है।
1: सौम्या का नाम जैसा है वैसे ही सौम्या लग भी रही है। तो सौम्या आप आज अपने नन्हे श्रोताओं के लिए क्या लेकर आई हैं?
7: मैं आज आपको पेड़ों के बारे में कुछ सीख दूंगी। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें सबसे पहली बात तो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम आज जिंदा हैं, और हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए।
1: पेड़ जीवन दाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। एक और बच्चा हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका?
8: मेरा नाम विवान नामदेव है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मतलब एक स्टोरी बताना चाहता हूँ अपनी। जब फिफ्थ में आया था तब जब समर हॉलीडेज लगी थी तब मैं सोता रहता था और बैठा रहता था और अपना हॉलीडे होमवर्क करके फिर मैं समर हॉलीडे होमवर्क ख़त्म करके स्कूल गया। जब हॉलीडे ख़त्म हो गई उसके बाद फिर मैं स्कूल पहुंचा तब मेरे सारे फ्रेंड में इम्प्रूवमेंट आई थी। मतलब वो कहीं ना कहीं जाते थे और बहुत कुछ सीख के आए थे, मतलब समर हॉलीडेज़ में बहुत कुछ सीख के आए थे। तो मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं अगले समर में बैठे नहीं रहूँगा, मैं भी कुछ सीखूँगा। मैं जब अब सिक्स्थ में आया तब मैंने भी सोचा कि मैं कुछ सीखूँगा, तो मैंने क्राफ्टिंग सीखी, बहुत सारी ड्राइंग सीखी।
1: और बताइए अपने दोस्तों को भी आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं?
8: जी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई समर हॉलीडे में फ्री ना बैठे, क्योंकि अगर आप फ्री बैठेंगे तो ये आपका गोल्डन चांस चले जाएगा।
1: क्योंकि बाकी टाइम तो आपके पास समय होता ही नहीं है, स्कूल, उसके बाद स्टडी टाइम है ना, होमवर्क कंप्लीट करना, और थोड़ा सा गेम्स के लिए भी तो समय चाहिए। तो ये जो छुट्टियों का समय है इसे आप,
8: ये हमारे लिए गोल्डन चांस,
1: गोल्डन चांस है। बहुत अच्छी बात विवान ने हमें बताई है। क्या नाम है आपका?
9: मेरा नाम वृंदा भार्गव है।
1: वृंदा आज यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है?
9: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ।
1: वृंदा ये बताइए कि आप आज अपने नए श्रोताओं के लिए क्या लेकर आई हैं?
9: मैं कविता लेकर आई हूँ,
1: सुनाइए।
9: हम हैं नन्हे वीर जवान, हम भारत के वीर किसान, आजादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों से लड़ते रहते, गंगा जमुना की आंखों से खुशियों बने पिघलते रहते।
1: प्यारी सी कविता आपने सुनाई है। और अब मिलते हैं, क्या नाम है बेटा आपका?
10: मेरा नाम अनुष्का यादव है। तो एक बार की बात है, जब मैं मेरे पिछले समर हॉलीडेज की बात है, जब मैं कहीं घूमने गई थी उस वक्त मैंने योगा ज्वाइन कर रखा था। तो मेरे लिए क्या था, मेरी एक डांस एक हॉबी थी। उस वक्त मैंने अपना चांस मिस कर दिया, लेकिन एंड मैंने ना जो योगा था वहाँ पर मैंने ज्वाइन करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जाती नहीं थी ज़्यादातर, और मैं अपने टाइम को वेस्ट करती थी। तो मैं उन लोगों को ज़्यादातर यही बताना चाहूँगी, अपने टाइम को वेस्ट ना करे वो, और उसे मतलब एक समय एक अनमोल चीज़ है, तो वो उसे वेस्ट ना करे बल्कि उसका यूज़ करे अलग अलग चीज़ों में। आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करें, और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पसंदीदा गेम जो भी है आप उसे कर सकते हैं।
1: तो अनुष्का ये कहना चाहती है कि समय जो है वो बहुत ही कीमती होता है, उसका सदुपयोग करना जरूरी है ना। और आपका क्या नाम है बेटा?
11: रितिका लोधी।
1: रितिका आज क्या लेकर आई है अपने श्रोताओं के लिए?
11: गर्मियों की छुट्टी के बारे में।
1: तो गर्मी की छुट्टियां तो चल रही हैं, तो सबसे पहले तो रितिका ये बताइए कि आपकी छुट्टियां कैसे चल रही हैं?
11: अच्छी चल रही हैं।
1: क्या कर रहे हैं छुट्टियों में?
11: ड्राइंग और डांस।
1: अच्छा, शौक है आपको?
11: हाँ।
1: क्लासेस जाते हैं या घर पे प्रैक्टिस करते हैं?
11: क्लासेस जाते हैं।
1: इन छुट्टियों में घर में मम्मी की हेल्प भी करते हैं?
11: हाँ।
1: थोड़ा थोड़ा?
11: हाँ।
1: कैसे?
11: कुछ काम करवा के।
1: अच्छा, कैसे काम करवाते हैं?
11: मम्मा कुछ बोल दे तो वो कर दो या कुछ भी।
1: मतलब छोटी छोटी मदद आप मम्मी की करते हैं।
11: हाँ।
1: आप बच्चों को इन छुट्टियों में जब आपको घर में रहने का समय मिला है तो थोड़ी थोड़ी मदद जरूर करें। छोटे छोटे काम जो आप कर सकते हैं उनमें आप मदद जरूर करें। बेटा क्या नाम है आपका?
12: मेरा नाम मान्यता केशरवानी है।
1: मान्यता ये बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं?
12: मैं कुछ अपने घर के बारे में बताना चाहती हूँ।
1: बताइए।
12: जैसे कि हमारी माँ है जो, वो घर का काम जैसे अकेले करती हैं, पापा तो थोड़ा बाहर चले जाते हैं, माँ को बहुत सारे काम होते हैं, तो उनकी मदद कर दिया करें। तो ऐसी पिछली गर्मियों की छुट्टियों के टाइम मैंने स्टार्ट किया था कुकिंग करना, मतलब कुकिंग सीखना। तो मैं अपनी माँ से कुकिंग सीखती हूँ, कि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको ज़्यादा करना ना पड़े। तो वैसे ही इस गर्मियों की छुट्टियों में भी मैं कुकिंग ही सीख रही हूँ अभी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है मान्यता, अपनी मम्मी की मदद कर रही हैं आप, और ऐसे में अच्छा भी लगता होगा आपको, है ना?
12: जी
1: हाँ, माँ के साथ समय बिताना सभी को अच्छा लगता है।
12: मैं कुछ सुनाना तो नहीं, बस यही बताना चाहती हूँ कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों का कोई ना कोई अच्छे काम के लिए उपयोग करें।
1: एक और प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बिटिया, क्या नाम है बेटा आपका?
13: मेरा नाम नितिशा जैन है।
1: बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हो आप। तो नितिशा आज क्या सुनाएगी?
13: आज मैं अपने बारे में कविता बोलना चाहती हूँ।
1: अपने बारे में बताइए।
13: पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी कहती थी कि कोई क्लास ज्वाइन कर लो, ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, लेकिन मैं मना कर देती थी। उसके बाद जब गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हुई तो मैंने स्कूल में कुछ ड्राइंग सीखी, और फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कोई ड्राइंग क्लास वगैरह ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मम्मी ने कहा था।
1: अच्छा, तो फिर
13: मैंने सोचा कि अगले साल कोई मैं ड्राइंग क्लास ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती थी।
1: वेरी गुड। और मिलती है एक और बच्चे से। बेटा क्या नाम है आपका?
14: मेरा नाम शिवांश सोनी है।
1: शिवांश,
14: हाँ।
1: आप क्या लेकर आए हैं?
14: आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, हिस्ट्री की।
1: वाह, हिस्ट्री की?
14: हाँ।
1: सुनाइए।
14: मैं एक बार पचमढ़ी घूमने गया था, अभी इसी समर्स में। तो मैं वहाँ पे एक मुझे गाइड मिला था जो हम लोग ने अपॉइंट किया था, तो उसने हम लोग को एक म्यूजियम लेके गया था, और वहाँ पे माने उस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे एनाकोंडा माने उसकी वो थे, रियल प्रजाति नहीं थी।
1: अच्छा।
14: बस वो उसके पुतले बस थे वहाँ पे, और वो रियलिस्टिक लग रहे थे बहुत।
1: अच्छा, थे पुतले मगर रियल दिख रहे थे वो।
14: हाँ
1: हाँ, क्योंकि वैसे भी शिकार तो नहीं करना चाहिए, नहीं हाँ, करना चाहिए ना?
14: नहीं, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया पे।
1: अच्छा, तो आपको तो म्यूजियम देख के अच्छा लगा होगा?
14: हाँ, बहुत अच्छा लगा था।
1: हाँ, मतलब आप समर में घूमने गए थे।
14: हाँ।
1: और अब छुट्टियों में क्या कर रहे हैं?
14: अब मैं छुट्टियों में तो पहले मैं योगा जाता था, फिर पचमढ़ी घूमने चला गया था, फिर मैं अभी ड्राइंग क्लासेस आया हूँ। इन छुट्टियों का उपयोग करें इतना कि वो अगले समर्स के लिए भी और अच्छा हो जाए।
1: बहुत प्यारी बात शिवांश ने हमसे की है। और छोटी छोटी बिटिया हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका?
15: अंशुलता लोधी।
1: तो आप क्या लेकर आई हैं?
15: मैं चींटियों की मेहनत पे चार लाइंस लाई हूँ। हर पल चलती जाती चींटी, समकारा सुनाती चींटी, करी धूप हो या हो छाया, दाना चुनकर लाती चींटी।
1: बहुत ही प्यारी, जितनी छोटी छोटी सी आप हो उतनी प्यारी छोटी सी कविता आपने सुनाई है। और आपका क्या नाम है?
16: अंशिका विश्वकर्मा।
1: अंशिका आप क्या लेकर आई हैं?
16: मैं एक पहेली और एक कहानी लेके आई हूँ।
1: पहेली पूछेंगी? और उसका जवाब?
16: उसका जवाब भी मैं ही दूंगी।
1: अरे वाह।
16: पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो नाक पे बैठती है और कान पकड़ के पढ़ाती है? इसका उत्तर है चश्मा। और मैं एक कहानी भी लेके आई हूँ,
1: सुनाइए।
16: एक बार की बात है, एक जंगल था, वहाँ पे एक राजा रहता था जो कि शेर था। वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसको दूसरा राजा ढूंढना था। तो उसने अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि मैं किस तरीके से दूसरा राजा ढूंढूं। तो उसके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम एक प्रतियोगिता रखवाते हैं, जो सबसे

0: दौड़ेगा उसको जंगल का राजा बनवा देंगे। तो सब लोगों जानवरों ने दौड़ना शुरू किया और चीता और बारहसिंगा लास्ट में बचे थे। दौड़ते दौड़ते बारहसिंगा नीचे गिर गया, पर ना चीता ने बारहसिंगा की मदद की। फिर बारहसिंगा दौड़ने लगा, फिर वो दौड़ा तो चीता भी गिर गया। तो फिर बारहसिंगा ने सोचा कि ये गिर गया है तो मैं आगे जाके जीत जाऊंगा, तो उसने उसकी मदद नहीं की और वो आगे चला गया और जीत गया। फिर राजा ने ऐलान किया कि कौन जीता, तो राजा बोला कि जीता चीता है। तो बारहसिंगा बोला चीता कैसे जीता, जीता तो मैं हूँ। तो राजा ने बोला हमें मददगार राजा चाहिए जो कि प्रजा की सहायता करे, तो चीता बहुत ज्यादा मददगार है इसलिए उसे राजा बनाया जाएगा।
1: बहुत ही जानकारी भरी कहानी अंशिका ने हमें सुनाई है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है बेटा?
2: रिमशा।
1: तो रिमशा से हम जानते हैं कि रिमशा आज क्या लेकर आई है।
2: मैं एक बात लेकर आई हूँ, मतलब एक स्टोरी टाइप है कि अभी जो गर्मी पड़ रही है तो मेरे घर के सामने एक मेरी दीदी है, मैं उनको दीदी बोलती हूँ। सो उनकी जो सिस्टर है उन गाँव में एक दिन आता है दो दिन पानी नहीं आता है। तो मेरे बड़े पापा को ये बात पता चली तो कुछ मतलब चिड़िया हैं और बर्ड्स हैं और काफ़ी सारे मतलब पेट्स हैं और एनिमल्स हैं जिन्हें पानी नहीं मिल पाता है वो करते हैं। तो मेरे बड़े पापा काफ़ी टाइम से जंगल में मतलब ऐसा बनाया था उनने जिसमें वाटर रखा था और दाना भी था। तो काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर कुछ चिड़ियाँ आईं तो उन्होंने बताया कि काफ़ी वो है, और मैंने कहा चलो मैं भी करूँगी। हमारे घर प्लांट्स थे तो वहाँ मेरे पापा ने वहाँ एक पॉट टांग दिया था, वहाँ पर मैंने वाटर रखा, तभी काफ़ी सारी चिड़ियाँ आईं। और फिर मैंने नीचे एनिमल्स के लिए भी रखा था तो काफ़ी सारे एनिमल्स ने भी पानी पिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी प्यासा मिले या सबकी हेल्प करो आप किसी को, मतलब आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है।
1: इन गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें, हो सके तो अपने घर की छत पर आंगन में इन पक्षियों के लिए दाना पानी रखें ताकि इनकी भी प्यास बुझे। क्या नाम है आपका?
3: रुद्र वाल्मीकि।
1: और रुद्र आप क्या कहना चाहते हैं?
3: रुमाल बांध के जाना चाहिए, मुंह पे कान ढक के जाना चाहिए, चश्मा पहन के जाना चाहिए और पानी की बोतल अपने साथ रख के जाना चाहिए
1: गर्मी में ना।
3: हाँ
1: बहुत अच्छी बात रुद्र ने की है कि गर्मियों में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखें। एक और प्यारा बच्चा हमारे साथ है, बेटा क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम गर्व लचोरिया है।
1: और गर्व आप क्या अपने नन्हे श्रोताओं को सुनाएंगे?
4: मैं पेड़ों पर एक कविता सुनाऊंगा।
1: सुनाइए।
4: वृक्ष हमारे सच्चे साथी सदा ही साथ निभाते हैं, प्राण वायु देते हैं हमको, हरियाली फैलाते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, बारिश में ले आते हैं, इनसे ही हम अन्न और दालें फल सब्जियां पाते हैं। जीवन में हम सबको ही इस नियम को अपनाना होगा, चाहे कोई भी अवसर हो हमें पेड़ लगाना हो।
1: बहुत ही प्यारी बात इस प्यारे से बच्चे ने बताई है, पौधे लगाएं, उन्हें पानी दें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आप सभी बच्चों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बच्चों को जय हिंद।
5: जय हिंद।
1: प्यारे बच्चों मजा आया ना? और अब सुनते हैं कहानी।

0: बच्चों एक बार फिर आ गए बाबा लेके अपने पिटारे में एक बहुत प्यारी सी कहानी। बच्चों कहानी का नाम है उड़ान। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही प्यारी और रंग बिरंगी चिड़िया थी, लेकिन उसे उड़ना नहीं आता था। वो पेड़ की डाल पर बैठी बैठी हमेशा दूसरी चिड़ियों को उड़ते हुए देखती और सोचती,
1: काश मैं भी ऐसे ही उड़ पाती।
0: नहीं मानते। अगले दिन चिंकी ने उड़ने की कोशिश की। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाए, लेकिन वो बस कुछ ही

0: इंच ऊपर उठ पाई और पेड़ नीचे गिर गई। उसे थोड़ी सी चोट भी लगी पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन चिंकी ने उड़ने की कोशिश की। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और फिर जोर से फड़फड़ाए, लेकिन वो बस फिर कुछ ही इंच ऊपर उठ पाई और फिर नीचे गिर गई। उसे थोड़ी फिर से चोट लगी। उसने फिर हार नहीं मानी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करती रही। कभी गिरती, कभी थक जाती, मगर हर बार खुद से कहती,
1: मैं कर सकती हूँ, मुझे बस कोशिश करते रहना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ।
0: धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होते गए। अब वो थोड़ी देर तक हवा में टिकने लगी। फिर एक दिन जब सूरज की किरणें सुनहरी चमक रही थीं, चिंकी ने अपने पंख फैलाए और फड़फड़ जोरदार फड़फड़ाकर एक लंबी उड़ान भरी। वो हवा में ऊंची उड़ती गई और खुश होकर चहचहाई,
1: मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी।
0: तो बच्चों, अगर हम हिम्मत और मेहनत से कोशिश करते रहें, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उड़ने से मतलब है बच्चों आसमान में नहीं उड़ना, अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अपनी मेहनत के बल पर, अपने अच्छे कामों के बल पर मम्मी पापा की नजर में उड़ना। ये सारी चीजें जब बच्चों आप करोगे, तो बाबा फिर आएंगे एक और कहानी लेकर। तब तक बाबा ये चला।
2: प्यारे बच्चों, अच्छी लगी ना कहानी? और समय हो चला है आप नन्हे श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपने ऋतु दीदी को कार्यक्रम बाल सभा से अनुमति दीजिए। सभी बच्चों को जय हिंद।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज, फिल्म राज 3।

गीत और संगीत था राशिद खान का। जावेद अली को आपने सुना, फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोज में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

आपके भरोसे फिल्म का गीत आपने सुना शान और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

जैस्मिन सेंडलास और सतेंद्र सरताज की ये आवाज़ें आपने सुनी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन का लिखा ये नगमा था, शाश्वत सचदेव का संगीत था, धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओं, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक महत्व को उजागर किया जा सके। खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के बीज का की जो प्रक्रिया है वो बेहद सुरक्षित रहे, दूषित भोजन खाने से बचें जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इससे कुपोषण और गंभीर पेट की बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। असुरक्षित भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं। खाना पकाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, भोजन को उचित तापमान पर संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा केवल हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ भारत में जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं काम करती हैं। सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बीमारियों से हम दूर रहें। न सिर्फ स्वास्थ्य हमें जीवन प्रदान करता है, बल्कि एक कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी बहुत कुछ महफूज रहती है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें।

0: अरमान मलिक की आवाज़ थी, साथ ही नीति मोहन को भी आपने सुना। रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक का संगीत था। हेट स्टोरी 3 फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम।
2: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

0: 7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें।
1: दिल का हाल सुने दिल वाला,

0: सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

0: जापानी।
1: के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से, और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: हालात बदलते।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिसमें दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: चीं, चीं, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

0: ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहाँ हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जुहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जा करके सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता

0: पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
1: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
0: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
1: नहीं कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ।
0: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
1: ये पास सच कर, ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं, ये देखो ये देखो।
0: ईमानदार हो?
1: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल, ये देखो।
0: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
1: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
0: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
1: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
0: ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर, यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते 420।
1: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

0: फार्म है, किसान बाड़ी है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो डॉक्टर के लिए बुलवाते हैं, सेहत की बात करते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं और बहुत मार्गदर्शन मिलता है इनसे।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है मुन्ना भाई, आप इतने गौर से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं।
0: और सागर संवाद।
1: हाँ हाँ, मुन्ना भाई बताएं, फरमाइश क्या लेके आए हैं आप?
0: सर देश प्रेमी का, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो।
1: मुन्ना भाई हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर देश प्रेमी फिल्म का ये गीत।
2: नफरत की

0: हाँ नमस्कार भैया।
1: नमस्कार, फोन करेंगे सुने में स्वागत है आपका।
0: बांदी से जिंदर कुमार जैन बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ
0: अरे यार, हम एक छोटे से बिजनेसमैन है, रहता तो बच्चे के पास होंगे गाँव में, लेकिन बिजनेसमैन थोड़ी गर्मी की छुट्टी थी तो आया था।
1: और देखिए, इतिहास गवाह है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं उन छोटे छोटे कामों से ही अपनी शुरुआत की है।
0: जी जी, बड़े बनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, एक एक स्टेप लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जिनेंद्र कुमार, हमें ये बताएं कि गर्मी के मौसम में व्यक्तियों को लू से बचने के लिए और गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए किन किन सावधानियों की जरूरत होती है?
0: संतुलित भोजन करना चाहिए।
1: हाँ
0: सबसे बड़ी चीज गमछा बने सफेद वाला।
1: हाँ
0: नहीं, बगैर प्यास के पानी पीते रहिए, पानी की उपलब्धता बनी रहे और जेब में प्याज रख दे।
1: हाँ
0: हाँ, घोल ठीक रहिए, घर में बन सकता है। मिट्टी, नमक, शक्कर, थोड़ा सा खाने का सोडा, एक चुटकी।
1: बिल्कुल,
0: देखो इतना बढ़िया किसका बनेगा आपका उमर है।
1: हाँ हाँ,
0: मैं आपको चर्चा नहीं कर सकता हूँ।
1: अच्छा जिनेंद्र भाई, बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: है अपना दिल तो आवारा ना जाने किसके आएगा।
1: आइए सुनवाते हैं जिनेंद्र कुमार आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्कार। फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं।
0: हम दिलीप कुमार विश्वकर्मा बोल रहे हैं, बल्लभ नगर वार्ड से।
1: तो दिलीप भाई क्या करते हैं बल्लभ नगर में आप?
0: छोटी सी पानी की शॉप है सर मेरी। ये बड़ी माता का मंदिर है जो बेजेटा की रोड पे।
1: हाँ, वहाँ पे है। एक तरफ इतवारी टोली लग जाती है, दूसरी तरफ
0: मोती नगर
1: लग जाता है,
0: और बल्लभ नगर, तीनों तो बीच में हमारी दुकान
1: है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो रेडियो कब कब सुनते हैं आप?
0: जो दुकान पे दिन भर चलता है सर।
1: तो कितने साल हो गए आपको रेडियो चलाते हुए?
0: हाल तो 10-12 साल हो गए।
1: दिलीप भाई, गर्मी के मौसम में भी आप पान की दुकान पर बैठे रहते हैं, तो अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, तंदुरुस्त कैसे रखते हैं आप?
0: जनरल ने कहा पीते रहते हैं और अपना ठंडा पानी पीते रहते हैं।
1: हाँ, और पंखा चलाते रहते होंगे आप?
0: हाँ जी।
1: और प्रयास करें कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसकी भी मदद जरूर करें आप।
0: हाँ सर, पानी की बोतल टांगे रहते हैं, वो पीते रहते हैं ठंडी पानी।
1: दूसरों को भी पिलाइए पानी आप।
0: हाँ जी सर।
1: तो बता दें गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: सर राजा रंग का सुनना है, वो माँ वाला, इतनी अच्छी है तू।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म राजा और रंग का ये गीत।

0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: राजकुमार अहिरवार, पिपरिया करकट से बोल रहे सर।
1: राजकुमार भाई, बताएं क्या करते हैं आप पिपरिया करकट में?
0: कुछ नहीं, मैकेनिक का काम करते हैं, जो मोटरसाइकिल अपने सुधारने का काम है।
1: कितने सालों से कर रहे हैं ये काम आप?
0: सर इस साल अपने के लिए 4 साल हो गए सर।
1: अच्छा अच्छा, तो हमें ये बताएं कि गर्मी के मौसम में कौन सी समस्याएं आती है मोटरसाइकिल में ज्यादातर?
0: अब ज्यादातर सर ये आती है कि थोड़ी गाड़ी वाहन को ऐसा चलाएं अपने हिसाब से।
1: हाँ।
0: कहीं भी अगर समय मिल जाए तो रुक जाने चाहिए, अपनी गाड़ी को भी नुकसान होता है क्योंकि इंजन में भी काम आ जाता है कि ज्यादा अपने ज्यादा जिस जैसे अपन ने 25-30 किलोमीटर चला लिया तो 2-5 मिनट का रेस्ट दे दे गाड़ी के लिए और अपन के लिए भी कुछ, तापमान में अपना भी ठीक हो जाएगा और गाड़ी का भी ठीक हो जाएगा। और पहली बात और सर एक बात और, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, हेडफोन लगाकर कभी बात ना करें और मोबाइल पर चलने के समय भी कभी भी हो गाड़ी चला रहे तो बात ना करें, क्योंकि अगर कितना ही इमरजेंसी हो तो थोड़ी साइड में गाड़ी लगा लें।
1: हाँ,
0: उसके बाद बातचीत करें।
1: अच्छा राजकुमार भाई, गर्मी के मौसम में आप दिन भर दुकान पर बैठते रहे तो फिर अपनी देखभाल कैसे करते हैं आप?
0: अब क्या है सर, हमारे तो क्या है, दुकान पर कूलर लगाया हुआ है, ग्राहक भी आ 3 कूलर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, ग्राहकों को भी सुविधा मिले और अपन को भी सुविधा मिले।
1: बहुत ही अच्छी बात है। तो राजकुमार भाई बता दें, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: सर हमें रोटी फिल्म है, रोटी फिल्म का सुनवा देना, कोई सा भी सुनवा देना।
1: राजकुमार भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अपने आप की देखभाल करें और दूसरों की भी मदद जरूर करें। और सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म रोटी का ये गीत।

और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है यातायात के नियमों का पालन करें। इसी मुद्दे की बात पर हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दे रहे थे विनोद यादव, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए संदेश।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
3: News on AIR। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। हाँ।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पात्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष जाधव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमय शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुँचता है पानी उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया ना कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माए अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहाँ बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियाँ करने वाली हैं, तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
3: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारी मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
4: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करें, अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल ले लेंगे। आज मुझे विविध भारती ने याद किया है अपने लोक रंग त्रिजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है मुझे गढ़ने में। हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यहाँ भोग में सुरस्वती कहीं ले जाए, तब सुनावत है आप सबके
3: सुरस्वती मैया की जय।
4: हाँ

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ, बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ, सुनाई गाती हूँ इतना।

0: बड़ा सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है।
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला का

देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माँ ही कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। हाँ, तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई ये नहीं बतावा, यहाँ देखत है सब बदल बा, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए जगह आए कि नहीं आए। अच्छा तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दो ही ठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार लोग देखें। तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परम्परा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
2: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
1: बिलकुल
2: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले ही इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला से छी, मैथिली भाषा है। सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले, हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिवशाही। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब।
0: वाह वाह।
1: तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं, भैरव ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, ज़रा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई। जट

गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहाँ अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज़ में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें हैं, युगल स्वर हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: आरती पर
1: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ, तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भारती का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है, भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है,

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूँ मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियाँ इस संसार की, कलियाँ खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी चुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी

अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार की गली बहुत सकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही। जो कब आएगा, कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे के डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज़ भी नहीं रह गई। वो रह गुज़र, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

संगीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है? और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है? जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है। और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना?

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही ज़रा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुँचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाज़ों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज़्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के ज़माने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता के कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के

0: खड़ा होकर इंतजार करता था कि निकले एक झलक में देख लूं,
1: क्या
0: जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
2: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
2: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री है, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतज़ार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बढ़ा चला जाता है। तो जी देखिए, उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएँ।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरीज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, उनसे मिली नजर लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।

जी हाँ, ये ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एस डी पर मन का संगीत। हीर रांझा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए शहनाई फिल्म का ये गीत, राजेंद्र किशन का संगीत और गीत रवि का।
1: न झटको जुल्फ से पा

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जाँच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 दमकलें और 3 वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच चुका है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीन शेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने जेम 2026 की प्रतिभागी बालिकाओं के लिए विशेष साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 150 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गईं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर

0: सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी TDP ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और TDP सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल है संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और ये अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याणजी आनंद जी का संगीत।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू, लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार

0: फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है, पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। वादा।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और

रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिया करनाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी

0: है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
1: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो कल की सी बात लगती है।
0: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
1: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
0: किबला?
1: अरे भाई किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
0: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
1: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
0: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
1: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
0: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
1: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
1: है? हाँ जरूर जरूर। और लछवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
2: जी हुजूर।
3: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
3: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
1: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
3: सौंपो जी सौंपो।
1: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
3: साड़ी मदद?
1: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
3: जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
1: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
0: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के माने ही रखूंगा।
1: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
0: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
4: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
5: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
4: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
5: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
4: उफ दादी जान,
5: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह तखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
4: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
5: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
4: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
5: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
4: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
5: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
4: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
5: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
4: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
5: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
4: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
6: जो हुक्म आ लीजिए। आलम बड़ा, गुलाम कादिर हाजिर है।
4: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
7: हुजूर,
2: हुजूर रहम।
7: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की कोड़ों से खालू देख दी जाए।

0: पर किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगा कर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेहयाबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफे लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहां है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा!

0: सम्मान कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं।
2: अभी सब देता हूँ हुजूर, अभी सब देता हूँ।
0: ला

0: उम्मीद कर शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं क्या

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: हैं? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की?

0: बी सर जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत, यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: दशा?
1: बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया।
0: जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ, दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होठ हैं, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी, इसी वक्त।
2: नहीं,
1: ये है सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा

लाला शीतलदास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई है ना, और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं, तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था है ना, और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ, और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी।
2: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
1: जी।
2: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
2: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है,
2: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
2: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस, तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
2: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ, ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में।
2: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में, और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा,
2: हाँ। तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
2: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
2: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे, और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
2: हो
1: था।
2: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
2: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
2: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है?
1: अच्छा।
2: ये लिखा किसने है
1: जी?
2: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा

0: हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा,
0: बोलते हम सब तो थे लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी, जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: आपका लिखा गीत है, चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए।
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी, जी जी।
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है
0: जी। उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी,
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे। आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास। हाँ हाँ। और कभी कभी ऐसा होता था, अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे। हम लोग खड़े तो ये बात थी। एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई। और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी,
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं का,
1: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा जाता
1: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती,
0: नहीं होती।
1: बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे अंग्रेजी में आएंगे
0: हाँ।
1: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: एक नहीं दो तीन रेडियो थे क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
0: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण में वो देशभक्ति का
1: ये जो जागरूकता थी ना वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
0: तो मितुल जी अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
0: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये
1: जी।
0: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम
0: अभी जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी,
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो

0: आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
1: यही पैगाम
0: वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से भाईचारा,
1: ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। तो आप कहिए तो यही गीत हम सुन ले,
0: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे।

0: उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाएं और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
1: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति हुई, एक
0: जागृति मिली
1: आंदोलन का
0: हमको।
1: जो हाँ बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
0: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी।
0: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: मेरे
1: बच्चों
0: बच्चों संभाल
1: संभाल
0: के,
1: के।
0: तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये
1: जी,
0: कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि
1: बहुत
0: उनको
1: बड़ी।
0: वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से। और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े
1: जी
0: बड़े देश,
1: जी
0: आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है ना?
0: हर एक लाइन सुनिए आप।
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा। क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले।

0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली, छत्रताल, बुंदेल, केसरी के जीवन पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह में से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें। साथ ही हमारा चर्चा का विषय है पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती हैं। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन विषय पर वार्ता, वार्ताकार है अवनी जैन। साथियों, साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें विषय पर। साथियों, आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में करियर का सही चुनाव जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। अनेक विद्यार्थी केवल दूसरों की देखा देखी या दबाव के चलते किसी क्षेत्र का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल एवं रुचि का सही मूल्यांकन करे और उसी के अनुरूप करियर का चयन करे। दोस्तों, कौशल का अर्थ है किसी कार्य को दक्षता और कुशलता के साथ करने की क्षमता। यह क्षमता जन्मजात भी हो सकती है और अभ्यास तथा शिक्षा के माध्यम से विकसित भी की जा सकती है। वही रुचि का संबंध उस कार्य से है जिसे करने में व्यक्ति को आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति का कौशल और रुचि एक ही दिशा में होते हैं, तब वह उस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाता है। साथियों, करियर चुनने से पहले व्यक्ति को स्वयं का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी की गणित और विज्ञान में अच्छी पकड़ है तथा उसे तकनीकी विषयों में रुचि है, तो वह इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी या अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकता है। उसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को लेखन, साहित्य और भाषा में रुचि है, तो वह पत्रकारिता, अध्यापक, लेखन या अनुवाद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण और करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही रुचि के अनुसार चुना गया करियर व्यक्ति को कार्य के प्रति समर्पित बनाता है। जब व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य करता है, तो उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। वह चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है और अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर पाता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपनी रुचि के विरुद्ध किसी कार्य क्षेत्र में काम करे, तो उसे मानसिक तनाव, निराशा और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले जहाँ केवल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी को ही अच्छा करियर माना जाता था, वहीं आज खेल, संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, पर्यटन, उद्यमिता आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अच्छा क्षेत्र माना जाता है और उनमें उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी विशेषताओं को पहचान कर सही क्षेत्र का चयन करना चाहिए। साथियों, करियर चयन केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए। धन जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु कार्य में संतुष्टि और आत्मविश्वास भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है, उसमें वह अधिक मेहनत कर पाता है और अंततः उसे सफलता, आर्थिक समृद्धि दोनों प्राप्त होती है। दोस्तों, करियर का चुनाव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसे जल्दबाजी या दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं लेना चाहिए। अपने कौशल, रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करके ही करियर का चुनाव करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह स्वयं को पहचाने, अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करे। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय पुस्तक है हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं पर चर्चा करने का। साथियों पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार होती हैं, बल्कि हमारे विचारों व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को भी प्रभावित करती हैं। कहा जाता है एक अच्छी पुस्तक जीवन को नई दिशा दे सकती है। वास्तव में पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखती हैं। वे हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाती हैं। दोस्तों पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इनमें विभिन्न विषयों का विस्तृत और उपयोगी ज्ञान संचित रहता है। विज्ञान, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजनीति, कला, संस्कृति जैसे अनेक क्षेत्रों की जानकारी हमें पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुस्तकें हमें केवल तथ्यों से परिचित नहीं कराती, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती हैं। इस प्रकार वे हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों पुस्तकें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर हमें उनके संघर्ष, परिश्रम, त्याग और सफलता से प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अनेक बार एक प्रेरणादायक पुस्तक किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी विकसित करती हैं। साहित्यिक पुस्तकें, कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं हमें नई दुनिया से परिचित कराती हैं। इन्हें पढ़कर हमारी भाषा समृद्ध होती है और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। साथ ही हम विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन मूल्यों को भी समझने लगते हैं। इससे हमारे विचार व्यापक और उदार बनते हैं। दोस्तों आज के आधुनिक युग में तकनीकी साधनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण लोगों को पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। लोग अधिकांश समय डिजिटल माध्यमों पर बिताते हैं। हालांकि इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से जो गहराई, एकाग्रता और चिंतन शक्ति विकसित होती है वह अन्य माध्यमों से प्राप्त नहीं हो पाती। पुस्तकें हमें धैर्यपूर्वक सोचने और विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। साथियों पुस्तकें केवल शिक्षा का साधन नहीं बल्कि वे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती हैं। जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। वे हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं और कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार पुस्तकें हमारे सच्ची मित्र की तरह हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाती हैं। साथियों पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। वे ज्ञान, प्रेरणा, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति को सफल, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकती है। इसलिए हमें पुस्तकों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन की आदत विकसित करनी चाहिए। वास्तव में पुस्तकें ही वह प्रकाश हैं जो हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है अवनी जैन।
1: तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन। धरती तपती धूप से कटते वन चहुओर, नहीं किसी को सुध यहाँ, बनते हृदय कठोर। बनते हृदय कठोर, नहीं सुध कोई लेते, काटे वृक्ष अपार, इसे बंजर कर देते। कहे विनायक राज, धरा सबके दुख हरती, वृक्ष लगाकर आज बचा लो तपती धरती। मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज की प्रगति के रूप में पृथ्वी के पर्यावरण की गुणवत्ता को बहुत नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी ग्रह के स्वास्थ्य के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। अपर्याप्त शोध और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग इसके बिगड़ने के दो प्रमुख कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि का प्रमुख कारण है जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण पर एक खतरनाक प्रभाव है जिससे हम तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण सभी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पिछली शताब्दी में

परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारी समिति IPCC यानी इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में योकोहामा जापान में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन के भयानक खतरों से एक बार फिर आगाह किया है। IPCC ने आसनन खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि अगर आज हम नहीं संभले तो जलवायु परिवर्तन की मार से कोई अछूता नहीं रह पाएगा, सभी को यह संकट झेलना पड़ेगा। भारत और चीन के लिए तो यह बड़े खतरे की घंटी है क्योंकि विश्व के एक तिहाई आबादी यहाँ रहती है। वैश्विक तपन से ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में बाढ़ आएंगी, फिर ग्लेशियरों के सिकुड़ने से नदियाँ सूखने लगेंगी, जल स्रोतों के सूखने से पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। आइए श्रोताओं, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभावों पर जोर डालते हैं, जैसे सिंचाई के अभाव और अल्पवृष्टि के कारण खाद्य उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, फसलें उगाना मुश्किल हो जाएंगी, इस कारण अनाज की कीमतें बढ़ती जाएंगी और व्यापक रूप से भुखमरी फैल सकती है, कुपोषण से लाखों लोग प्रभावित होंगे। IPCC ने एक और हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही रास्ता है, वह यह कि विश्व के सभी देश बिना समय बर्बाद किए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हर क्षेत्र में आपातकालीन समस्याएं दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वे मानव स्वास्थ्य पर असर हो या फिर पशु पक्षियों व वनस्पतियों पर असर हो। जैसे जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से कई तरह के संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जिसमें से हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो पाएगी। पशु पक्षियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के कारण यह जीव धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे एवं इनमें से कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव हमारे वनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में अब सिर्फ 20% ही वन बचे हैं। वनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव देश में मनाया जाता है। वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया है। वन वह महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इतनी कीमती चीज पाने के बाद हमें धन्य महसूस करना चाहिए। वन हमें लगातार भोजन, लकड़ी, सांस लेने के लिए हवा और अन्य जरूरी चीजें प्रदान करते रहते हैं। वे तमाम तरह के जीवों के लिए एक घर की तरह है। वन के बिना हम अपने जीवन और अन्य क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वनों की कटाई और छटाई के प्रति बढ़ता कदम एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जंगल प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा है। यह कई जीवित प्राणियों के लिए रहने की जगह देता है। इसके अलावा हम वनों से हर तरह के फायदे लेते रहते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, झाड़ियां आदि होते हैं। उनमें से कई औषधियां मूल्य प्रदान करते हैं, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं, हवा, भोजन, फल, लकड़ी, पानी और दवा प्रदान करते हैं। मित्रों, वनों की कटाई से हमारे पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विकास की ये दौड़ में मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से शहरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग तथा रहने के लिए घर आदि के निर्माण उद्देश्य से वन भूमि की कटाई की जा रही है। मानव का यह कार्य जो पूरी तरह से विकास के उद्देश्य के लिए केंद्रित है, वन भूमि के विनाश और गिरावट की तरफ बढ़ रहा है।
भविष्य या

0: चिंता किए बिना मनुष्य पूरी तरह से एक स्वार्थी इंसान में बदल गया है। इस प्रकार पेड़ों की संख्या में दैनिक आधार पर कटौती की जा रही है, इसलिए हमारा मुख्य ध्यान वन इकाई के संरक्षण की आवश्यकता पर होना चाहिए। यह हमारी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हमारी स्थिरता को बनाए रखेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मनुष्य पर्यावरण से लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय रहा है, लेकिन इस समय अंतराल में पर्यावरण से जिस तरह लिया गया है उसी प्रकार से लौटाना भूल गया है। इससे प्राकृतिक चक्र में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए दोस्तों, पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों व संतों के लिए वन तपोभूमि का प्रमुख स्थान रहा है। इन्हीं वनों में महान ऋषियों के आश्रम रहे हैं, जहाँ पर संत एवं उनके शिष्य रहते थे। समाज में इनका विशेष स्थान था, जिन्हें लोग पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से देखते थे। वन मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वन आवरण हटाने से उस क्षेत्र में बाढ़ और अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होगा और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। मनुष्य ने अपनी धन लोलुपता के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की और धीरे धीरे जंगल कम होते गए। फलस्वरूप धरती तपने लगी, अर्थात तापमान बढ़ने लगा। आज आवश्यकता है कि जितने वृक्ष कटने चाहिए उतने वृक्ष लगने भी चाहिए, तभी हम धरती को हरा भरा बना सकते हैं और तभी हम कह सकते हैं भारत बनेगा उपवन। दोस्तों, तपती हुई धरती को बचाने के उपाय एवं भारत भूमि को वापस हरा भरा बनाने व सजाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार के साथ साथ हम मनुष्यों को भी ये जिम्मेदारी सम्मिलित में लेके चलनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हम सभी को भी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा, जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग का असर कम किया जा सकता है। टेक्निकल डेवलपमेंट से भी इससे निपटा जा सकता है। हम ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाएं जिनमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल न होता हो और ऐसे वाहन बनाएं जिनसे कम से कम धुआं निकलता हो। सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है। श्रोताओं, अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन पर। वार्ताकार थी अवनी जैन। साथियों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल फोन इस तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, व्यापार और संचार का प्रमुख माध्यम बन चुका है। किंतु इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है, जिसे मोबाइल एडिक्शन या फिर मोबाइल की लत कह सकते हैं। यह समस्या विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मोबाइल एडिक्शन से बचना समय की आवश्यकता बन गया है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल फोन का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना और इसके बिना असहज महसूस करना। जब कोई व्यक्ति घंटों तक सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो या अन्य मोबाइल गतिविधियों में व्यस्त रहता है और अपने आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करने लगता है, तब यह स्थिति मोबाइल की लत के रूप में उत्पन्न होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का अधिकांश समय मोबाइल पर ही बीतने लगता है। दोस्तों, मोबाइल की लत के अनेक कारण हैं। इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता, सोशल मीडिया का आकर्षण, ऑनलाइन गेम, मनोरंजन के असीमित साधन और दोस्तों से लगातार जुड़ने की इच्छा इसके प्रमुख कारण हैं। आज अधिकांश लोग खाली समय में पुस्तकें पढ़ने, खेलने या परिवार

के साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल का उपयोग करना पसंद करते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी लत में बदल जाती है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिरदर्द और नींद की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण भी बन सकता है। कई बार व्यक्ति वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे सामाजिक संबंध भी कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों पर मोबाइल एडिक्शन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग उनकी एकाग्रता को भंग कर देता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट लाता है। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। प्रतिदिन मोबाइल उपयोग की एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसका पालन करें। पढ़ाई, भोजन और सोने के समय मोबाइल को अपने से दूर रखें। इसके अलावा खेलकूद, योग, व्यायाम, पुस्तक पठन और रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताने की आदत भी विकसित करें। साथ ही परिवार और मित्रों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी मोबाइल पर निर्भरता को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनके मोबाइल उपयोग पर उचित निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों को प्रेरणादायक गतिविधियों और स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान मोबाइल से हट सके। दोस्तों, मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की एक उपयोगी आवश्यकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें तकनीक का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए। यदि हम समय का सही प्रबंधन करें और मोबाइल पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखें, तो हम एडिक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ।
1: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है
2: मैं सागर हूँ।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
2: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
1: नमस्कार। सागर का हर चौराहा हर गली अपने में कई कहानियां समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियां हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर शेरी नासिर हूँ। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं सागर हूँ इस कार्यक्रम की मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम सागर, आकाशवाणी सागर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं की मैं आभारी हूँ कि वह इतना सुंदर सा कार्यक्रम जो हमारे सागर शहर के बारे में है, जिसमें सागर शहर के अतीत के बारे में बताया जाता है, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाता है, हमारे सुंदर से शहर सागर से जुड़े जो लोगों के संस्मरण हैं उनके बारे में हमें अवगत कराया जाता है, ये कार्यक्रम हम तक पहुंचाने के लिए तहे दिल से आभारी हूं। नगर निगम सागर ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं हमारे शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए, जिनमें नालों को स्वच्छ रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नालों को स्वच्छ रखने में नागरिकों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि घरों में जो वेट वेस्ट होता है, स्पेशली जैसे कि हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं तो उससे निकले हुए छिलके हैं, या फिर किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम लोग डस्टबिन में डालना प्रेफर नहीं करते, जबकि गीला कचरा स्पेसिफिकली ऐसे ही कचरे के लिए बनाया गया है, लेकिन हम गीले कचरे को कि हमारा डस्टबिन जो है वो मैसी हो जाएगा, वो बहुत गंदा सा हो जाएगा, इसको सोचते हुए हम लोग उस वेट वेस्ट को डायरेक्टली जमीन पर, रोड पर या अपने आसपास के नालों में जो फेंक देते हैं, उससे आगे जाकर के कितनी समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम कई बार उस वक्त रियलाइज नहीं करते, मगर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि अपने तौर पर हम इतना सा ध्यान तो रख ही सकते हैं कि जितना भी हमारे घर से निकला हुआ वेट वेस्ट है या किसी भी तरीके का वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, उसको हम यूं खुला ना छोड़ें, उसको हम रोड्स पर ना डालें। हमारे घर से जितना भी कचरा निकल रहा है प्रॉपरली इतना तो कर सकते हैं कि दो अलग अलग तरीके के डस्टबिन में उसको डालें। सागर के हर एक घर के लिए ये सुविधा आ रही है कचरा गाड़ी की, जिसमें हम लोग कचरा डालकर उस वेस्ट को आराम से ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारे घर से निकला हुआ कचरा नालियों के थ्रू नालों में जाता है वो आगे जाकर के नालों को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है और ब्लॉकेज भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मच्छर की समस्या भी आती है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। किसी भी शहर या गाँव की स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नाले हमारे आसपास के जल विकास की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम इनमें प्लास्टिक, पॉलिथिन, घरेलू कचरा या अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको डालते हैं तो नाले में जम जाता है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों और आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें, कचरे को हमेशा निर्धारित कूड़ेदान में ही डालें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें तथा नाले में किसी भी प्रकार का कचरा ना फेंकें। हमें ये भी समझना होगा कि स्वच्छ नाले केवल सफाई का विषय नहीं है, बल्कि ये जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने आसपास के नालों को स्वच्छ रखते हैं तब हम अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। आज जब मैं सागर को देखती हूँ इतना सुंदर सागर का नज़ारा देखने को मिलता है। हर जगह सफाई, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत खूबसूरत से पर्यटन स्थल हैं, बहुत बेहतरीन सेल्फी पॉइंट हैं। मैं अपने परिवार के साथ बहुत इन्जॉय करती हूँ और मुझे लगता है कि घूमने के लिए पहले जो मैं सोचा करती थी कि अब हम किसी और शहर में चलते हैं, वहाँ पर हमें कोई पिकनिक स्पॉट्स मिलेंगे, वहाँ पे हमें सेल्फी पॉइंट्स मिलेंगे, हम फ़ोटो खींचने के लिए जाएंगे, आज मैं देखती हूँ कि सागर में ही इतनी सारी जगह बन गई हैं कि कई बार महसूस ही नहीं होता है कि पिकनिक मनाने के लिए हमें सागर से बाहर जाने की भी आवश्यकता है। सागर में ही हम इतना एंजॉय करते हैं, इतना खूबसूरत लगता है ये शहर, और कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम का हाथ तो है ही, साथ ही सागर के आम नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए मैं पूरे सागर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आप हम मिलकर इस सागर को और सुंदर और खूबसूरत और साफ सुथरा बना सकते हैं।
1: हम पहुंचे नगर निगम कमिश्नर महोदय के पास, आइए जानते हैं उनके विचार।
4: कई बार हमने देखा है सर कि नालियों में लोग सामान फेंकते हैं, और यहाँ तक हमने देखा है कि अपना जो वेस्टेज है उसको कुओं में भी डाल देते हैं कई लोग, तो आज का ये अंक हम खासकर इस पर ही लेकर आए हैं और चाहते हैं कि आपसे चर्चा हो।
6: देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की हमें बेहद जरूरत होती है कि जितनी भी हमारी जल संरचनाएं हैं वो हमारी धरोहर हैं, उनमें हमारे कुएं आते हैं, बहुत सारे हमारे जो नाले हैं जिनमें हमारा वाटर स्ट्रोम का पानी जो है बहता है, तो उनको हम साफ स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे ने नगर निगम ने इन सब चीज़ों के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है कि हमारे नाले और कुओं को हम लोग जो है साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। उसको लेके हम आम आदमियों से आग्रह करते हैं कि वो अपना कचरा जो है कचरा गाड़ी में ही दें, क्योंकि उसका चूंकि आपके पास कचरा है और आपको लगता है कि हम कहाँ फेंकें, तो उसका आपके लिए सॉल्यूशन हमेशा नगर निगम उपलब्ध कराता रहता है। कहीं आपके पास कचरा गाड़ी नहीं आती है, कुछ नहीं आती, तो हमारे पास उसके टोल फ्री नंबर वगैरह हैं, उस आप कॉल करके या अन्य शिकायत माध्यम से या अन्य आपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस व्यवस्था के बारे में आप हमको अवगत कराते हैं। बट कृपया आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी जल संरचनाओं को स्वच्छ और सुंदर अगर रखना चाहते हैं तो उनमें कचरा ना फेंके। आप देख पाएंगे कि लाखा बंजारा झील इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब इसमें जलकुंभी या कचरा या अन्य तरह की चीजें होती थी तब यहाँ का परिदृश्य क्या था और आज का जो परिदृश्य क्या है, क्योंकि वो साफ सुथरी और व्यवस्थित है, तो देखने में अच्छी लगती है। तो साथ ही निगम के द्वारा भी लगातार कुओं के जो है पानी का टेस्ट और उनको साफ कराने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ नालों को साफ करने के लिए हमने जो है वो हम वॉच करते हैं कि नाले लगातार हमारे साफ होते रहे। नाले में भी दो तरह के नाले हैं, एक बड़े नाले होते हैं, एक मोहल्ले के अंदर के नालियां होती हैं, तो नालियों को तो हम डेली रूटीन में साफ करते ही हैं। नाले भी जो है हम जेसीबी और अन्य माध्यमों से पोकलैंड वगैरह के माध्यम से उनको जो है लगातार साफ कर रहे हैं, बट फिर भी आम आदमियों का उसमें सहयोग अपेक्षित ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है।
4: जी, एक सवाल और आ रहा है इसी संदर्भ में, वो कुओं से संबंधित ही है कि कई बार देखा गया है वो कुओं में कचरा जो डला है या खुले हैं कुएं, तो उसमें कई बार गाय या बछड़ा वगैरह भी गिरने की आशंका बनी रहती है, तो ऐसे में इस ओर भी क्या ध्यान दे रहा है नगर निगम?
6: उसको लेके निगम जो है कुओं पे जगत और उनपे जाल बनाने की जो है कार्रवाइयां कर रहा है। जल्दी ही कुएं सारे सुरक्षित और संरक्षित, स्वच्छता सर्वे भी स्टार्ट हो गया है, और कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है।
7: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
2: और नासिर को।
7: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
4: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
4: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
2: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 5:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में। शब्द रचना देव कोहली, बिदु और सोनू निगम की है। संगीत निर्देशन बिदु का है।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया फीडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीत संगीत।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए, अरिजीत सिंह और कुमार की आवाज में। शकील आजमी ने इस गीत को लिखा है, संगीत अंकित तिवारी का है। फिल्म का नाम है तुम बिन टू।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था, संगीत निर्देशन अंकित तिवारी का था। फिल्म का नाम था तुम बिन टू, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2016 में। कार्यक्रम में अब वक्त अंतराल का।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सड़क। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में ये गीत था। संगीत नदीम श्रवण का था, शब्द रचना समीर की थी। और इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत को अब हम कर रहे हैं संपन्न। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। सुनिए कमलेश सोनावाला का लिखा हुआ ये गीत। गायक कलाकार और संगीतकार हैं उस्ताद शुजात हुसैन खान।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: क्यों नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए एल्बम एक हसीन शाम से आलम रे बरेलवी का लिखा हुआ ये गैर फिल्मी गीत, गायक कलाकार और संगीतकार भूपेंद्र सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत गैर फिल्मी गीत और संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है बंदनी। SD बर्मन की आवाज़ और संगीत है। शब्द रचना शैलेंद्र की है।

कार्यक्रम सदाबहार गीत के अंतर्गत अब सुनिए गुलजार का लिखा हुआ गीत, हेमंत कुमार की आवाज और संगीत है। फिल्म का नाम है खामोशी।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा था, संगीत इकबाल कुरैशी का था, फिल्म का नाम था चा चा चा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार गीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लोक रंग लेकर।

एफएम बैंड 106.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 6:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं लोक भजन डॉक्टर गजाधर सागर की आवाज में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब ईसुरी लोक गीत सुनिए केशव सुलेरे की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी दे रहे हैं आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 7:10 से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से। 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम लोकरंग, और 7:30 से भोपाल केंद्र से सुन सकेंगे ग्राम सभा का अनुप्रसारण। आज रात 8 से सुनिएगा भोपाल केंद्र से केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण, विषय वंचितों को वरीयता। रात 8:35 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता, और 8:45 से दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम करेंगे। आज रात 9 से सुनिएगा कार्यक्रम मन चाहे गीत, 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, रात 11 से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 से अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण। आज की प्रसारण सभा का समापन हम करेंगे रात 11:10 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में, और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: और श्रोताओं, कार्यक्रम

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब आपको जानकारी दे रहे हैं कल यानी 8 जून 2026 दिन सोमवार की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। कल की प्रसारण सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:53 पर। 6 बजे से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे। 6:05 से कार्यक्रम अर्चना सुनिएगा। 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ रविंद्र साठे के गायक स्वर में। 6:40 से भूले बिसरे गीत। 6:55 से दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। 7 बजे से कार्यक्रम सुबह सुबह और 7:05 से कृषि संकेत के अंतर्गत डॉक्टर एमपी दुबे द्वारा सुनिएगा जानकारी। विषय होगा खेत बचाओ मिट्टी परीक्षण की जानकारी। सुबह 7:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:20 से मनचाहे गीत और 7:45 से संगीत सरिता सुनिएगा। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम लोक संगीत। 8:30 से सुनिएगा बिंदिया कार्यक्रम। 9:50 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। 10 बजे से भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी और 10:05 से फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम। 11 बजे से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
4: हाँ जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रतनीश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश है आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों वक्त है कब छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जांच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
2: अलग अलग ढंग के कैंसर देखे, जो तथ्य है वो बेहद चिंताजनक। अब अगर 2598 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल रहा, 254 सस्पेक्टेड है, तो आप कल्पना करो कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो और नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा है मौके कैंसर वाले। ये मौका कैंसर क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता, ये आफत हम खुद बुलाते हैं। ये होता है तंबाकू से। इलाज कराते कराते परिवार टूट जाता है। कई बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं। बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं।
0: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन धार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि
3: साइकिलिंग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है, एक्सरसाइज, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहे, हम ऊर्जा के साथ काम करें और अंदर से व्यक्ति जब मजबूत होगा तो जीवन में वो हर काम को मजबूती से कर पाएगा। और आज इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और जीवन में हर व्यक्ति को साइकिलिंग करना चाहिए, ये सभी से मैं आह्वान करती हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है, ये समाज को सकारात्मक दिशा

पर बधाई दी। उन्होंने कहा भारतीय टीम की सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मॉनसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीट वेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। यह पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आगे फैमिली आओ, नहीं झुमके
2: ना,
1: पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि
2: हाँ
1: लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को है, बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम ग्राम सभा का अनुप्रसारण।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं ये सजीव टेलीफोनिक कार्यक्रम है। टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे, सीधे टेलीफोन करेंगे और अपनी समस्या हम तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें संकेत मिल रहा है किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं सीधे।
3: हेलो
1: जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी मैं जगत सिंह चढ़ा ग्राम पेपलिया।
1: हाँ,
3: तहसील बेगमन जिला रायसेन।
1: जगत सिंह चढ़ार, चढ़ार साहब क्या सवाल है आपका?
3: जी अब ये बोल रहा मूंग आ गई, मूंग काट के ऐसी कौन सी फसल है अच्छी जल्दी जाए मक्का की?
1: अच्छा, मूंग के बाद में आपको मक्का की फसल लगानी है ऐसा?
3: जी जी जी।
1: तो मक्का लगाना चाहते हैं आप, तो आप बताएं कि आपका कितनी खेती है आपके पास?
3: खेती तो मुझकी अभी 3 एकड़ में मूंग वही है।
1: तो पूरे 3 एकड़ में मक्का लगानी है?
3: जी नहीं, और भी लगना है मगर उसमें मूंग के खेत की लगने अलग।
1: मतलब मूंग के बाद में आपको मक्का लगानी है, तो आपको जो है मक्का फसल लगाने के लिए क्या करनी है, क्या तैयारी करनी है, ये जानकारी चाहिए।
3: जी
1: चलिए हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब
2: जी,
1: जैसे कि हमारी श्रोता है तो ये
2: मूंग के बाद मक्का लगाना चाहते हैं। मक्का की इस समय जो है लगाने का अच्छा समय आ रहा है, और मूंग यदि लगा करके मक्का लगा रहे तो वैसे भी ये जो हरित खाद जिसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरी, उसका काफी फायदा इनको मिलने वाला है। और जहां तक किस्मों की बात है, वो किस्में लगाते समय अपने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो प्रचलित किस्में हैं जिनको सफलतापूर्वक पूर्व में लगाया गया है, उन किस्मों का चयन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त नमी, बारिश की व्यवस्था होने के बाद ही बुआई करें। कई लोग सूखे में बुआई कर देते हैं तो लंबे समय तक पानी नहीं आता, या पहली बारिश बहुत तेज आती है तो उस समय परिस्थितियां खराब हो सकती है। तो सही विचार कर उपचारित बीज ही बोए, और पर्याप्त अंतर पर रखेंगे बीजों का, पौधों का, कतार का, तो ज़्यादा लाभ होगा। कीड़ों की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
1: जी तो चढ़ार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और खास तौर से मूंग के बाद में मक्का की खेती करने की आपने जानकारी ली। अगले किसान भर लाइन पर हैं, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं। जी हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी सर नमस्ते।
1: जी आप शुभ नाम बताएं, जगह का नाम बताएं और सवाल करें।
4: जी ग्राम देवपुर पोस्ट बमनोरा जिला छतरपुर से बोल रहे हैं, हुकम चंद यादव।
1: हुकम चंद यादव जी, सवाल करें आप।
4: जी सर, जो अपने गर्मियन में उड़दा बोए हैं वो अपन बस बरसात में भी वो नया बीज बोए?
1: गर्मी में उड़द बोए आपने, वही बरसात में लगा सकते हैं क्या? आपका सवाल ये है?
4: हाँ जी जी
1: बिल्कुल, आपको धोटे साहब बता रहे हैं क्या करना है।
2: देखिए जो गर्मी में आपने उड़द बोया है उसको आप बरसात में बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो बीज आपने उड़द का लिया है वो अच्छी तरह साफ सुथरा हो, उसमें किसी प्रकार का कचरा और दाल वगैरह नहीं न हुई हो, उसको अच्छी तरह से आप सफाई करके अच्छे बीजों का ही उपयोग करें। और अंकुरण को सही होगा या नहीं यह जांच करने के लिए 100 दाने भिगा करके रख दीजिए,

0: और उसमें देखिए कि कितने दाने अंकुरित होते हैं। वैसे इसके अंकुरण में या बोने में कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा कि जब फसल तैयार हो जाती है और किसी कारणवश कट नहीं पाती, पानी आ जाता है, तो फलियों में ही दाने उग जाते हैं। यद्यपि बहुत सी दूसरी फसलों में ये स्थिति रहती है कि ताजे बीजों को उसी समय नहीं बोया जा सकता है। तो उड़द के मामले में यह कोई अड़चन नहीं है। आप आराम से उस बीज को उपयोग कर सकते हैं, बस बीज साफ सुथरा हो और किसी प्रकार का दूसरा कचरा या जो छोटे बीज होते हैं वो ना हो।
1: तो देवपुर से आपने टेलीफोन लगाया यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दिया। हमारे आज के अतिथि मेहमान जो है धोटे साहब, जो कि वरिष्ठ उद्यानिकी विशेषज्ञ है, वो आपसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। और हमें संकेत फिर मिला है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं। हाँ जी, स्वागत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: मेरा नाम नीतेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ।
1: नीतेश मिश्रा जी, आपने नरसिंहपुर से हमें टेलीफोन लगाया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतेश जी, आज सवाल क्या करेंगे आप?
2: जी सर, हमने अपने खेतों में अमरूद और आम के पेड़ लगाए हुए हैं। सर, अमरूद है हमारा इलाहाबाद सफेदा लखनऊ 49 है। सर, जैसे ही हमारे इन जो अमरूद के जो पेड़ है उनमें जब फल बनना स्टार्ट होते हैं तो फल मक्खी बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो जो फल काफी प्रभावित होते हैं सर, तो फल मक्खी के किस प्रकार से नियंत्रण करें? और दूसरा प्रश्न ये कि हमने अपने खेत में भिंडी भी लगाई हुई है, उसमें एलोबीन मोजिक आ रहा है, तो अर्का अनामिका में, तो उसमें हम एलोबीन मोजिक को किस प्रकार से हम कंट्रोल करें?
1: बिल्कुल, तो पहला सवाल है आपका, अमरूद के फल जो है उनमें जो है कीट फल मक्खी लग रही है।
0: जी, जी, जी। और दूसरा
1: है भिंडी में जो है बीमारी है।
0: ये दोनों ही समस्या जो है ये पूरे भारत में जो भी अमरूद लगाते हैं और जो भी भिंडी लगाते हैं दोनों के लिए ही है। दोनों की समस्या बहुत ही सामान्य समस्या है और इसका उपचार जो हर बार बताते हैं वैज्ञानिक हो या विशेषज्ञ हो, तो वो इसी बात को बार बार बताते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इसका सही नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मैं आपको फल मक्खी के बारे में बताना चाहता हूँ, अमरूद की फल मक्खी के बारे में। तो जो अमरूद का फल, जैसे ही फूल से फल बनने लगता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसी समय एक ततैया, आपने लाल ततैया देखा होगा, वो ततैया का छोटा रूप लाल नहीं होकर के थोड़ा पीला भूरे रंग का या बादामी रंग का ही वो कीड़ा होता है, और वो उसके जो पीठ का हिस्सा है उसके पीछे एक चुभोने जैसी सुई होती है, वो सुई जैसा भाग उसको चुभो कर उसमें फल में अंडे दे देता है, जब फल छोटा रहता है, नाजुक रहता है। फल इधर बढ़ता रहता है, अंडा वहाँ पर सुरक्षित रहता है। जैसे ही फल पकने और नरम होने की स्थिति में आता है तभी वो अंडा फूट करके उसका लार्वा बाहर निकलता है और वही अपने फलों को खराब करता है। फल मक्खी का यदि हम नुकसान की बात करें तो दुनिया भर में अरबों रुपए की फल और सब्जियाँ ये फल मक्खी नुकसान करती है। अभी पिछले बार एक विशेषज्ञ से इस संबंध में मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ये फल मक्खी में एक विशेषता और है जो शायद आपको आश्चर्यजनक लगेगी, कि इसका जब नर मक्खी से संगम होता है तो उस समय जो उसके शुक्राणु वगैरह रहती है उन शुक्राणुओं को ये संग्रहित करके रख लेती है, और उसके बाद जब वो नर नहीं रहता तब भी इनमें वो क्षमता रहती है कि ये बार बार अंडे देते रहती है।
1: जी,
0: और उस वजह से जो उसकी क्षमता है अंडे देने की वो बनी रहती है। लेकिन अब के इसके नियंत्रण के लिए जो है वो नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, तो अभी आजकल बहुत हार्मोन्स वगैरह आते हैं, उसके अलग अलग शीशियों में एक काटन के कपड़े माने कपास के फाये में वो थोड़ी सी दवाई लगा करके शीशियों में खिड़कियां बना करके और नीचे पानी भर करके उसको लटका दीजिए, उसकी सुगंध से कीड़े आते हैं और वो खत्म हो जाते हैं डूब करके, तो उस तरह से नियंत्रण करें। दूसरा सवाल जो है भिंडी में एलोवेन मोजेक, तो ये सफेद मक्खी और थ्रिप्स के माध्यम से होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए एक साधारण इंसेक्टिसाइड और नीम के तेल का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका नियंत्रण आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो नीतेश जी आपके दोनों सवालों के उत्तर दिए धोटे साहब ने, और अगले किसान भाई जो है इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: नमस्ते सर, हम बाहर रात तहसील खनिया जिला

0: सिवरी मध्य प्रदेश
1: जी। शुभ नाम बताएं अपना।
0: हरदयाल जाटव।
1: जाटव जी अपना सवाल करें।
0: ये कहना चाहता हूँ सर कि मानसून आने के बाद जो रुवासी बहना चाहते हैं,
1: हाँ
0: रुवासी दो तीन बीघा बहना तो कितने क्या क्या बहना चाहिए माने?
1: मानसून आने के बाद?
0: हाँ जी।
1: नहीं मतलब मानसून आने के बाद क्या क्या आप किस चीज की बात कर रहे हैं?
0: ये पूछना चाहता हूँ माने रुवासी बहना चाहिए कितने बीघे बहना चाहिए?
1: रुवासी मतलब कुछ एक्स
2: रुवासी शब्द कुछ नया है
1: मतलब क्या गैप करना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या, क्या रहता है कोई कर्षक भी दिए क्या है
0: माने खाली खेत पड़ा तो माने उसमें सोयाबीन बोना है माने
1: हाँ। खाली खेत में सोयाबीन आपको बोनी करनी है
0: हाँ।
1: अच्छा तो मतलब मानसून आने के बाद में कुछ दिन छोड़ना पड़ता है क्या खेत को?
2: देखिए सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि जो हल्का फुल्का बारिश आता है तो उससे जमीन में पर्याप्त ठंडक नहीं होकर के उल्टा गर्मी हो जाती है। जैसे रोटी बनाते समय रोटी से ज्यादा उससे निकलने वाली भाप से हाथ में जलन ज्यादा होती है। तो ये हल्का फुल्की बारिश होती है और 40-42 डिग्री तापमान यहाँ पर रहा हुआ तो गर्म है धरती, तो उस समय अचानक बुआई नहीं करना चाहिए, पर्याप्त बारिश होने के बाद ही बुआई करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि बहुत कम बारिश के समय आपने बुआई कर दी और फिर बारिश नहीं हुई तो बीज खराब होने की संभावना रहती है।
1: सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरदयाल जाटव जी, आपने शिवपुरी जिले से टेलीफोन लगाया। अगले किसान भाई का टेलीफोन ले रहे हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी
3: सर जी नमस्कार
1: जी। आप अपना शुभ नाम बताए, स्थान भी बता दे, फिर हमें सवाल।
3: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से।
1: भागचंद साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप सवाल करें।
3: बिल्कुल सर
1: जी।
3: सर हम ये कह रहे हैं जैसे हमें उलद की बोनी करना है।
1: हाँ हाँ।
3: अभी फिलहाल में पानी का अभी गिरा नहीं है, पानी गिरने के बाद ऐसी कौन सी वेरायटी है जो हमारे लिए उपयोगी है वो बताएं।
1: मतलब उड़द की वेरायटी आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल
3: डॉक्टर साहब नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब बताएं
2: जी। देखिए साहू जी, आज का विषय विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों के लिए है और मैं भी उद्यानिकी फसलों के बारे में ही आपको जानकारी देना चाहता हूं। क्योंकि आपने उड़द की बात की है तो इस बारे में मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क करके वहां पर उपलब्धता अनुसार जो उपयुक्त किस्म है, विकसित किस्म है, उसका चयन करें और उसकी बुआई करें।
1: बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया बात है।
2: अभी चूंकि सभी बाकी किसान भाई भी सुनेंगे, आज का विषय उद्यानिकी से संबंधित है तो यद्यपि कृषि के प्रश्नों का भी मैं उत्तर दे रहा हूं लेकिन विशेष रूप से केंद्रित उद्यानिकी पर है तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि उद्यानिकी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो अधिक उपयोगी होगा यह कार्यक्रम।
1: सही बात है। और किसान भाइयों हम आपको बताएं, आज का जो हमने विषय रखा है वो है मानसून के आगमन पर बगीचों एवं उद्यान की फसलों में सामयिक कार्य। बगीचे बाग बगीचे हम सभी जानते हैं, इस समय आम का सीजन चल रहा है ना, और भी दूसरे फल जो हैं आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। और बगीचों के साथ ही साथ जो हमारी उद्यान की फसलें हैं उनमें भी जो है कई तरह के सामयिक कार्य इस समय आप कर सकते हैं। तो इन सब सवालों को लेकर ये कार्यक्रम आज हम जो है प्रस्तुत कर रहे हैं और विशेष रूप से आपसे निवेदन यही है कि उद्यान की फसलों या बाग बगीचे से संबंधित आप सवाल करेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। हमारे आज के जो विशेषज्ञ है दीनानाथ धोटे साहब, जो कि वरिष्ठ उद्यान के विशेषज्ञ है, वो आपको अच्छे से जो है हर चीज समझाएंगे। एक श्रोता लाइन पर है, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका, शुभ नाम बताए अपना।
4: नमस्कार सर, देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ।
1: राजेश अग्रवाल जी, क्या सवाल है आपका?
4: सर ये मेरे यहाँ जैसे बगीचा है करीब 10x10 का।
1: हाँ हाँ।
4: तो इसमें सब्जियाँ इस मौसम में कौन सी सब्जियाँ जैसे लगाना चाहिए?
1: मतलब घर में ही लगाना चाहते हैं? बिल्कुल बता रहे हैं ना।
4: जी जी हाँ, घर के बाहर ही बगीचा है मेरे।
2: अग्रवाल जी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और आपका सवाल भी बहुत ही उपयोगी है। आजकल जो व्यावसायिक रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उन सब्जियों में काफी मात्रा में विषैले रसायन

0: रसायनों का कीट नियंत्रण के लिए, दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है, खाद भी डाली जाती है, तो उस वजह से आजकल लोगों में घर के आसपास जो उपलब्ध भूमि होती है उसका उपयोग करके सब्जियां लगाने की जो आदत शुरू की जा रही है या शौक उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत ही उपयोगी है। बरसात के समय में आप बहुत सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं, जिसमें से बैंगन है, भिंडी है, अभी आप ग्वारफली लगा सकते हैं, बरबटी लगा सकते हैं, टमाटर मिर्च की पौध भी आप ला करके लगा सकते हैं। तो इन फसलों को खास तौर पे आप इस समय लगा सकते हैं। दूसरी तरफ कद्दू वर्गीय सब्जियां, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको, जैसे चाहे लौकी हो, गिलकी हो, तुरई हो, अभी आप टिंडा भी लगा सकते हैं और गिलकी, ये सारी चीजें, कद्दू भी लगा सकते हैं। तो ये सारी फसलें इस समय आप लगा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि बेल वाली सब्जियों को जमीन पर फैलाने के बजाय उसको सहारा देकर ऊपर चढ़ने के लिए या मंडप नुमा कुछ मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। पर्याप्त तो धूप लगना चाहिए, और यदि भूमि की अपने पास च्वाइस नहीं होती, जहां पर जगह उपलब्ध होती वहीं पर लगाते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो धूप का सामना करते हैं वहां पर छोटे पौधे, और जो पीछे साइड पीछे की तरफ होते हैं वहां पर लंबी अधिक ऊंचाई वाले पौधे आप लगा सकते हैं, उनमें आपस में पर्याप्त अंतर दे। और एक विशेष बात, चूंकि बारिश का मौसम है, खूब पानी आता है, तो जल के निकास की व्यवस्था उचित रखेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा।
1: तो राजेश अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि लगातार हमारे पास में किसान भाइयों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और हम उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी दीनानाथ धोटे साहब, जो कि वरिष्ठ उद्यानिक विशेषज्ञ हैं, कर रहे हैं। एक किसान भाई फिर लाइन पर हैं, चलिए उनका टेलीफोन ले लेते हैं।
0: स्वागत है
1: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: नमस्कार सर, गुड्डू चौबे बोल रहा, बमोरी ढूंढा जिला सागर से।
1: गुड्डू चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बमोरी से, आप सवाल करें।
2: जी
1: हाँ, आप सवाल करें, क्या है आपका सवाल?
2: सवाल तो आपके व्यवसाय से हटके हैं सर जी, मगर थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन बताएं।
1: अगर आप हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बिल्कुल, जो है हमारे दीनानाथ जी
2: हमारे आम के पेड़े हैं दो।
1: हाँ हाँ
2: तो वे हैं तो तनक पुराने, 40 साल हो गई हमारे, लेकिन बहुत छोटे फल हो लगे, पहले बहुत बड़े होते, अब तो भी अचार के काम के लिए उठा ले जाते हो भाई,
1: बता रहे हैं आपको।
0: गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है।
2: जी,
0: आम तो फलों का राजा है, और आज की परिस्थितियों में और आज का अभी जो मौसम चल रहा है उसमें भी आम की बहार है बाजारों में, फल छोटा हो रहा है और अचार के काम आप ले रहे केवल, ऐसा आपने प्रश्न में कहा है। तो अचार के लिए जो आम आ रहा है बाजार में तो उनके भी काफी अच्छे दाम मिलते हैं, लेकिन पहले बड़े आते थे, अब छोटे आते हैं। इसका सहज कारण ये है कि हम उसके पोषण पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। 40 साल का पेड़ है, छत्र छाया शब्द आपने सुना होगा, उसका मतलब ये होता है कि 12 बजे की जब धूप पड़ती है तब उस समय जितनी छाया पेड़ के नीचे आती है वो छत्र छाया का क्षेत्र कहलाता है। आपको करना यह है कि तने से बाहर और वो छत्र छाया के भीतर, मतलब अभी 40 साल का पेड़ है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 से 15 फीट तने से बाहर एक नाली खोद दीजिए 8-10 इंच की, और गुड़ाई करके उसमें खाद और पानी दीजिए। खाद के रूप में आपको गोबर खाद खूब देना है, यदि आप कर सके तो 1 से 2 किलो बढ़िया नीम की खली बारीक करके खाद में मिला करके वो डाल दीजिए, और वो जो घेरा आपने एक जो थाला नुमा बनाया है आसपास, एक नाली बनाइए गोल, उस नाली में ही पानी और सिंचाई कीजिए, पानी दीजिए और खाद दीजिए, तो निश्चित रूप से अगली बार अच्छी बहार आपके पौधों पर आएगी और फलों का आकार भी बढ़ेगा।
1: तो काफी महत्वपूर्ण जो है जानकारी उपलब्ध कराई है, और गुड्डू चौबे जी ने जो सवाल किया है ये हो सकता है अन्य कई किसान भाइयों का भी हो,
0: निश्चित रूप से।
1: क्योंकि
0: आम के
1: आम
0: बड़े पौधे जैसे बढ़ते
1: बिल्कुल
0: जाते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: तो दूसरे किसान भाई भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे कि जैसे कि दोटे साहब ने बताया कि आम या कोई भी बड़ा पौधा होता है अक्सर, उसमें जो है अगर इस तरह से खाद की व्यवस्था करनी है तो उसके छाया के
0: सामान्य
1: अंदर।
0: तौर पे जो व्यावसायिक बगीचे लगाते हैं उनको छोड़ करके बाकी बगीचों पर पोषण के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता
1: सही
0: है
1: बात है। तो ये
0: ना,
1: कुछ
0: तो
1: आपने
0: यदि
1: सही
0: उनका
1: तरीका
0: ध्यान
1: बताया
0: थोड़ा सा रखेंगे
1: बिल्कुल।
0: और केवल पानी और गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में देंगे तो भी फलन अच्छी तरह
1: जी
0: से
1: दोटे
0: होगा।
1: साहब एक किसान भाई लाइन पर है, हम उनका टेलीफोन
0: स्वागत
1: लेते
0: है
1: हैं।
0: उनका
1: जी नमस्कार, आप अपना सवाल करें, नाम बताएं पहले तो।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी शिमला से आपने टेलीफोन
0: क्या
1: लगाया
0: बात
1: है, क्या सवाल है आपका?
3: जी मेरा सवाल ये कि जैसे कि जो मक्का लगाना चाहते हैं अपने गांव में,
1: मक्का
3: तो इसमें जो कौन कौन सी जो है मक्का लगा सकते ताकि हमारे प्रदेश में इसका उत्पादन ज्यादा हो?
1: शिमला हिमाचल प्रदेश में आप मक्का लगाना चाहते हैं और इसकी वैरायटी आप जानना चाहते हैं?
3: जी जी
1: ऐसा है ना, तो धोडे साहब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं।
0: क्वेश्चन नंबर किसान बंधु जी
1: राकेश जी है शिमला।
0: राकेश जी पहले तो आपको इतनी दूर से भोपाल आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आज का मुख्य रूप से विषय तो उद्यानिकी पर है, पर आपने मक्का के संबंध में प्रश्न किया है। मक्का में अलग अलग निजी कंपनियों की बहुत सारी प्रचलित किस्में है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कौन से बीज उपलब्ध है और अन्य किसान भाइयों ने उनको सफलतापूर्वक किया वो कौन सी किस्में हैं, क्योंकि इन किस्मों में एक मतलब ये है कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग तरीके की किस्मों को पसंद किया जाता है और उन्हीं किस्मों को की उपलब्धता वहां पर होती है। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप क्षेत्रीय कृषि विभाग के अधिकारी से एक बार संपर्क करके और फिर मक्का की किस्मों का चयन करें तो ज्यादा लाभ होगा।
3: जी जी जी जी जी धन्यवाद
1: जी। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिमला हिमाचल प्रदेश से हमें टेलीफोन लगाया और इतनी बढ़िया जानकारी आपने ली। लगातार हमें टेलीफोन कॉल्स मिल रहे हैं, लगातार हमारे किसान भाई लाइन पर आ रहे हैं और वो अपनी समस्याएं अपनी जिज्ञासाएं हमें बता रहे हैं और फिर हमें संकेत मिल रहा है कि किसान भाई का फोन आ रहा है। चलिए हम उनका टेलीफोन लेते हैं। जी
4: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। शुभ नाम बताएं, स्थान भी बताएं और फिर सवाल करें।
4: जी श्रीमान जी, सर जी मेरा नाम है रणनाम सिंह रजक।
1: रजक साहब
4: ग्राम बापू छिटीपुर ग्राम पंचायत छिटीपुर तहसील करेरा जिला शिवपुरी आपका नियमित श्रोता मित्र प्रणाम सिंह रजक।
1: जी रजक जी आप सवाल करें।
4: श्रीमान जी मैं ये जानना चाहता हूँ
1: जी,
4: मुझे मूंगफली की फसल लगाना है, चाहिए तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी अपने मध्य प्रदेश में और अपने मेरे शिवपुरी जिले में कब मौसम मतलब वो मानसून आ जाएगा और कितने तारीख से बोवनी करें मूंगफली की?
1: मूंगफली की फसल लगाना है, मानसून कब आएगा ताकि हम बोनी करें, ये आप जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल धोटे साहब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं।
0: देखिए अभी आपने समाचारों में भी सुना होगा कि मानसून की दस्तक शीघ्र अपने दक्षिण भारत की ओर से हो रही है और
1: अभी 9-10 तारीख को तो बारिश भी
0: हाँ,
1: बताई है आपने।
0: अभी निकट भविष्य में 9-10 तारीख को बारिश की संभावना है और कुछ अनुमान के हिसाब से 16 से 20 के मध्य भी बारिश पुनः आने की संभावना है।
1: बिल्कुल।
0: तो चूंकि मूंगफली के बीज जो है बहुत नाजुक होते हैं तो आप उसको ये देखिए कि पर्याप्त बारिश हो जाए, पर्याप्त नमी खेत में रहे तभी आप बुआई करें, अन्यथा बीज की नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो पर्याप्त बारिश हो जाए तभी आप करें। जो संभावना मैंने आपको बताई है ये आप अनुमान जो मौसम विभाग और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली उसके आधार पर मैंने बताया है, कृपया तदनुसार कार्यवाही करें। और अधिक विशेषज्ञ मतलब विशिष्ट जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।
1: बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजक साहब, आपने मूंगफली लगाने की जानकारी ली और चूंकि हमें संकेत मिल रहा है किसान भाई का टेलीफोन आ रहा है, चलिए उनका टेलीफोन सुनते हैं। जी नमस्कार।
5: नमस्कार सर। हेलो
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें।
5: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर, मैं आज विषय नहीं सुन पाया, हमारे बिजली नहीं थी थोड़ी जानकारी।
1: विषय बहुत आसान है, उद्यान की फसलों बाग बगीचों में इस समय आपको क्या करना है ये आज का विषय है। आप स्थान का नाम बताइए, कहाँ से टेलीफोन लगाया आपने?
5: जी मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ जिला सीहोर से।
1: नरेंद्र दांगी जी, सीहोर से आपने टेलीफोन लगाया है, बहुत अच्छी बात है। हमने विषय बता दिया, आप सवाल करेंगे?
5: सर मेरा ये सवाल है, अपने आम के पौधे हैं सर, उनमें कहीं कहीं की केरियों में काले जो निशान पड़ रहे हैं,

0: आम के
1: फलों
0: पो
1: में।
0: आम के पो अच्छा जो केरिया है फल है उनमें काले निशान पड़ रहे हैं।
1: जी जी
2: तो ये छोटे छोटे निशान है कि बड़ा धब्बा है?
1: हाँ जी सर।
2: नहीं, बड़ा धब्बा एक पड़ता है चोच के स्थान पर, वो एक अलग समस्या होती है, बाकी छोटे छोटे मतलब बिंदु जैसे वो पड़ते काले, वो एक अलग समस्या है। तो क्या छोटे छोटे निशान है या बड़ा धब्बा है?
1: बड़ा धब्बा है सर, बड़ा।
2: तो बड़ा धब्बा तो बोरेक्स के कारण होता है। आसपास क्या ईंटों के भट्टे हैं क्या आपके आसपास?
1: नहीं है सर, आज स्वास्थ्य सर मकान बने हुए हैं और ये जी मूंग लगे हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो ये एंथ्रेक्नोज की संभावना इस पे लगती है। पत्तियों पर भी इसके काले काले छींटे हो सकते हैं, थोड़े से बदरंग से मोटे से होते हैं पत्तियों के सरफेस से। तो आप उस पर जो है बोर्डो मिक्सन का छिड़काव करेंगे और ठीक तरह से उसकी छटाई, जिसमें पर्याप्त धूप मिल सके, पौधे के अंदर तक धूप जा सके, ऐसा यदि करेंगे तो इस समस्या का निदान अधिक होगा। और अधिक समस्या होने पर इसमें 1 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम डाइथेनियम 45 का मिला जुला छिड़काव करेंगे तो इस पर नियंत्रण अच्छी तरह से हो सकता है।
0: तो नरेंद्र दांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टेलीफोन लगाया और हमें संकेत फिर मिला है। किसान भाई लाइन पर है, चलिए समय बहुत कम है, संक्षिप्त में सवाल करें। जी स्वागत है आपका। हाँ जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं।
3: सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आप नाम बताएं अपना।
3: जिला गुना से।
0: जी आप सवाल करें।
3: जानना चाहता हूँ सर के इस 5 साल का पेड़ नींबू का।
0: हाँ, 5 साल का नींबू का पेड़ है।
3: हाँ, तो उसमें फल नहीं आ रहा है, ना फूल आ रहा।
0: बिल्कुल बता रहे हैं
2: जी। क्या इसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलने की जगह है?
3: हाँ धूप मिल रही ना सर।
2: हाँ तो अब आप 5 साल का पेड़ है, करीब करीब मेरे ख्याल से 4-5 इंच मोटा हो गया होगा, 4 इंच करीब। तो आप उसको एक काम कीजिए कि उसका जो तना है उससे लगभग 3 फीट का घेरा छोड़ करके एक बढ़िया से 8 से 10 सेंटीमीटर की एक गोलाकार नाली उस पेड़ के आसपास कर दीजिए और उसमें लगभग 2 से 250 ग्राम नीम की खली, गोबर की खाद और ये दोनों खाद मिला करके, वर्मी कंपोस्ट है तो 1 से 2 किलो वर्मी कंपोस्ट उस पूरे थाले में मिला दीजिए और अच्छी तरह सिंचाई कीजिए। यदि झुरमुट जैसा पौधा हो गया है तो उसकी कटाई छटाई करके व्यवस्थित कीजिए, अगली बार जरूर फूल आएंगे उसमें।
0: बिल्कुल। तो मांगीलाल चंदेल जी, आपने टेलीफोन लगाया गुना से, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम किसान भाई हमें टेलीफोन लगा रहे हैं, अभी भी कुछ वक्त है यदि हमारे किसान भाई चाहें तो। जी हमें संकेत मिल रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना शुभ नाम बताएं।
4: नमस्कार सर जी।
0: जी आप शुभ नाम बताएं, स्थान बताएं और सवाल करें।
4: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी क्या सवाल है अपना?
4: सर जी मेरा ये सवाल था कि मेरे 4-5 कटहल के पेड़ हैं, तो मैं एक साल तो कटहल बढ़िया आया, बड़े बड़े उच गए, इस बार क्या हुआ कि बड़े बड़े कटहल छोटे छोटे रह गए सर। मैंने उसमें खाद बीज भी दिया था।
0: अच्छा।
4: और उसमें बढ़िया खाद बीज भी देता रहता हूँ, लेकिन कटहल जरूर छोटे छोटे होकर रह गए उसमें।
0: कितना पुराना पेड़ है
4: सर? पेड़ तो बहुत पुराना, 8-10 साल हो चुके।
0: 10 साल हो चुके, बिल्कुल बता रहे हैं
4: जी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जितने भी कटहल उत्पादक है या जिनके घर पर कटहल लगा हुआ है, सभी के लिए उपयोगी प्रश्न है। आपको भी यही ध्यान रखना है कि चूंकि पेड़ काफी पुराना है और उसके पोषण पर अपन विशेष ध्यान नहीं देते हैं, चूंकि तना भी काफी बड़ा हो गया और हमारी सामान्य तौर पर आदत होती है कि हम तने के पास थाला बनाकर पानी देते हैं, वहां पर पोषण ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता है। तने से कम 6 फीट दूर एक नाली बना दीजिए, 8-10 इंच गुड़ाई करके उसी में अच्छी तरह से पानी भरिए और नीम की खल 1 से लेकर 2 किलो तक के बारीक करके गोबर के खाद में मिला करके उसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह पानी देंगे तो उस पर अच्छे फल आने की संभावना है। दूसरा, छोटे छोटे फल भी इसके गिरते हैं, उसके गिरने की वजह ये होती है कि वो वास्तव में फल नहीं होते हैं। जिस फल का डंठल छोटा अवस्था

0: था में ही अंगूठे जैसे या उंगली जैसा मोटा होता है, वही छोटा सा फल कटहल के रूप में परिवर्तित हो पाता है। कुल मिलाकर के पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, उसके अभाव में अच्छी तरह से उत्पादन नहीं मिलता है। तो आप पोषण का यदि पौधों का ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक उपज आपको प्राप्त हो पाएगी।
1: बिल्कुल। तो मनोज नामदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया, और इसी तरह हमारे तमाम किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टेलीफोन लगाकर जानकारी दी। और चूंकि वक्त हो चला है सजीव फोन इन कार्यक्रम के समापन का, अब समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम आज के हमारे विशेषज्ञ दीनानाथ धोटे साहब को भी धन्यवाद कहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ,
1: और चूंकि हम सभी जानते हैं समय की पाबंदी है, इसलिए घड़ी की सुइयां ये कह रही है कि अब समाचार जो है समापन किए जाए। आज का विषय हमने रखा मानसून के आगमन पर उद्यान की फसलों की देखभाल। विशेषज्ञ थे दीनानाथ धोटे। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, उद्घोषक नीरजा मीणा, प्रसारण सहयोगी कांता मणि, तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और अक्षय गुप्ता ने। अब महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता।
3: This is Akashwani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
4: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
5: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
6: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
5: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
6: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
5: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
6: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर

0: की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो AI और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा AI इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ TB, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में AI टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन TB अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने AI ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में TB का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशन आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों

0: को कैटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद है, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 106,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड 19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक है उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के

जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ

0: सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमले किया है, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड 19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड 19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।

0: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
1: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
0: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
0: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगी?
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on EIR. This program is also available on our YouTube channel News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:35 हुए हैं श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत गैर फिल्मी गीत संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फुरकत एल्बम से ये गीत। गायक कलाकार और संगीतकार हैं पंकज उधास।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत और संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को है। बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर

पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 9 बजे है और अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्रोताओं, अब से अगले 30 मिनट का सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला फरमाइशी फिल्मी गीत हम शामिल कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। ये गीत है, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है दोस्ताना। पहले सुन लेते हैं गीत। गीत के उस पार जानेंगे फरमाइशकर्ताओं के नाम।

दोस्ताना फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता, व्हाट्सएप द्वारा टेक्स्ट आप सभी ने भेजे। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद और आलिया और आयान, वंदना रैकवार उत्तर, मोक्ष वैभव, विनायक रानी, राम गुनगुन, आप सभी ने जगह का नाम टेक्स्ट में नहीं लिखा है। नवा शहर से सुरिंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स। सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। संभाजीनगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन और बेबी और ओवी, आप सभी की फरमाइश पर आपने सुना दोस्ताना फिल्म से गीत। और अब अगली फरमाइश, पहले फरमाइशकर्ताओं के नाम आपसे साझा कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी और कल्पना। छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान और फैजान। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव और एस के खुराना। वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, आप सभी की फरमाइश पर सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है हीरो।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

पूजा, मधु और सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार, जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, निमनाबाद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर, आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, शिवहरी का संगीत, फिल्म का नाम डर।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना फिल्म डर से, और कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए एक और फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, मोहम्मद सईद अब्बासी निघत, परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी बुलंदशहर से, पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति सिंह और वंशराज सिंह बुलंदशहर से, कस्बा गुनौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा, विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और इनके सभी साथी मध्य प्रदेश खंडवा से, खंडवा शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनाया महाराज और बेबी लूसियान, पीएस नवाकर, निर्मला, विशाल सोपान महाराष्ट्र से, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार और आशीष मोहरेकर, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं सलामी फिल्म से

श्रोताओं आपको जानकारी दे दें इस गीत के बारे में। ये गीत है फिल्म सलामी से, जो कि 1994 में रिलीज़ हुई थी। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, समीर की शब्द रचना है, संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओं, सलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे हैं और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को संपन्न करने का समय हो रहा है, तो कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

जिसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 केन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

0: जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।
1: आ नजर

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव थी।

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीनाताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही हैं शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा ऐसी शामों का मंजर बन जाता है।

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है। यूं लगता है कि यही बस यही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

मौसम सीधे मन पर असर डालता है। इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार। सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। विचारा
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत

0: भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।